FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 348 के आश्विन मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। मौन पालन लाभदायक व्यवसाय, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सुनीता अग्रवाल।
3: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मौन पालन की। जी हाँ किसान भाइयों, मानव जाति की सबसे बड़ी मित्र होने के साथ छोटी सी मधुमक्खी से प्रकृति के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मधुमक्खी मधुर और पौष्टिक खाद्य पदार्थ अर्थात शहद का उत्पादन करती है। लीची, नींबू, प्रजातीय फलों, अमरूद, बेर, आड़ू, सेब इत्यादि और अन्य दलहनी और तिलहनी फसलों में मधुमक्खियां द्वारा परागण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, परीक्षणों से यह भी जानकारी मिली है कि पर परागण के बाद जो फसल पैदा होती है उन दानों का वजन और पौष्टिकता अच्छी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मधुमक्खियां केवल शहद ही पैदा नहीं करती वरन फसलों की पैदावार बढ़ाकर खुशहाल बनाकर प्रदेश और देश को आर्थिक पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद करती है। प्रत्येक मधुमक्खी परिवार में तीन प्रकार की मक्खी पाई जाती है जिनमें रानी, नर मक्खियां और कमेरी मक्खियां होती हैं। मधु अति पौष्टिक खाद्य पदार्थ तो है ही, साथ ही दवा भी है। मैदानी भाग में इस कार्य को शुरू करने का उपयुक्त समय अक्टूबर और फरवरी में होता है। इस समय एक स्थापित मौन वंशों से प्रथम वर्ष में 20 से 25 किलोग्राम, दूसरे वर्ष से 35 से 40 किलोग्राम मधु का उत्पादन हो जाता है। स्थापना का प्रथम वर्ष ही कुछ महंगा पड़ता है। इसके बाद केवल प्रतिवर्ष 6 से 10 किलोग्राम चीनी का खर्च रहता है। प्रति मौन वंश स्थापित करने में लगभग 2450 रुपए व्यय करना पड़ता है। मधुमक्खी पालकों की मधुमक्खियों का प्रत्येक 10वें दिन निरीक्षण आवश्यक है। आधुनिकतम ढंग से मधु निष्कासन कार्य किया जाता है जिसमें अंडे बच्चे का चैम्बर अलग होता है। शहद चैम्बर में मधु भर जाता है। मधु भर जाने पर मधु फ्रेम सील कर दिया जाता है। शील्ड भाग को चाकू से परत उतार कर मधु फ्रेम निष्कासक यंत्र में रखने से और उसे चलाने से सेंट्रीफ्यूगल बल से शहद निकाला जाता है और मधुमक्खियों का पुनः मधु इकट्ठा करने के लिए दे दिया जाता है। इस प्रकार मधुमक्खी वंश का भी नुकसान नहीं होता है और मौसम होने पर लगभग पुनः शहद का उत्पादन हो जाता है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन का महत्व फलों, सब्जियों, दलहनी तिलहनी फसलों पर परागण के द्वारा उपज की बढ़ोतरी तो होती ही है, इसके साथ साथ इसके द्वारा मधु मोम का लाभ भी मिलता है। किसान भाइयों, स्थापना के प्रथम वर्ष में 3 मौन वंश से 2 अतिरिक्त मौन वंश और 20 से 25 किलोग्राम मधु का उत्पादन करके लगभग 2000 से 2500 रुपए की आय प्रतिवर्ष होती है। दूसरे वर्ष में केवल 300 से 350 रुपए व्यय करके मधु का उत्पादन करके लगभग 3500 रुपए से 4000 रुपए तक की प्रतिवर्ष आय की जा सकती है। मधुमक्खियां विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों में परागण सुनिश्चित करके और इसके साथ ही शहद और अनेक प्रकार के छत्ता उत्पादों को उपलब्ध करा के समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। धीरे धीरे यह व्यापक रूप से अनुभव किया जा रहा है कि मधुमक्खियां पर्यावरण मित्र कृषि के साथ साथ फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से कम खर्चीली हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मधुमक्खियां द्वारा किए जाने वाली परागण संबंधी सेवा से जो अतिरिक्त उपज प्राप्त होती है उसका मूल्य सभी छत्ता उत्पादों के कुल मूल्य की तुलना में लगभग 15 से 20 गुना अधिक है। मधुमक्खी पालन में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालक अपनी आमदनी को काफी गुना बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो एकीकृत कृषि व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किसान या भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जा रही है। फसलों के परागण में मधुमक्खी पालन खासा उपयोगी है जिससे कृषि आय में बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों या मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ रही है और शहद, रॉयल जेली आदि महंगे मधुमक्खी उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। कृषि जलवायु मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए व्यापक संभावनाएं और अवसर उपलब्ध कराती है। वास्तव में किसान भाइयों, फसल उत्पादन के अतिरिक्त अगर हम मौन व्यवसाय को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये हुई बातें मौन पालन की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: मौन पालन लाभदायक व्यवसाय, इस विषय पर जानकारी दे रही थी प्रतिमा वर्मा। और अब समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 291।
4: एपिसोड नंबर 291 291।

लंका के लिए कूच करने को तत्पर श्री राम की सेना वानर राज सुग्रीव का आदेश पाते ही गर्जन तर्जन करती प्रस्थान करती है। विशाल रूप धारण कर वानर और रीच वृक्षों तथा पर्वतों का शस्त्र लेकर थल और आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। दिशाएं भयंकर नाद से गूंजने लगती हैं। पर्वत चंचल हो जाते हैं और समुद्र मानो खौलने लगते हैं। श्री राम की सेना सागर पार कर लंका में उतर गई है, ये समाचार सुनकर मंदोदरी आतंकित हो जाती है। वो रावण से विनती करती है कि वो श्री हरि का विरोध छोड़ दें, क्योंकि सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक इकंत, शीश काटी पगतर धरे तब पैठ कोई संत। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम का घर तो ऊंचे स्थान और एकांत में स्थित होता है। जब कोई इसमें त्याग की भावना रखता है तभी वहां तक कोई पहुंच सकता है। ऐसा तो कोई संत ही हो सकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जो रुचे शीश दे ले जाए। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि किसी खेत में प्रेम की फसल नहीं होती, ना ही किसी बाजार में यह मिलता है। जिसे प्रेम पाना है उसे अपने अंदर त्याग की भावना रखनी चाहिए और इसमें प्राणोत्सर्ग करने को भी तैयार रहना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में लोग कहते हैं कि हम अमूक से प्रेम करते हैं या अमूक हमसे प्रेम करता है। यह वास्तव में बहुत बड़ा भ्रम है। सच देखा जाए तो अपने जिनके साथ हमारे स्वार्थों के संबंध हैं, उनसे हमारा प्रेम तो केवल दिखावा है। प्रेम न तो किसी को दिखाने की चीज है न बताने की, वह तो एकांत में अनुभव करने वाली चीज है। ध्यान लगाकर उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें तब इस बात का अभ्यास होगा कि वास्तव में उसने प्रेम के वशीभूत होकर ही यह हमें मानव जीवन दिया है। उसका हमारे प्रति निष्काम प्रेम भाव है जो हमारे जीवन का रास्ता सहज बनाए देता है। जब हम इसी निष्काम भाव से उसका स्मरण करेंगे तब पता लगेगा कि वास्तव में प्रेम क्या है। जो लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का दिखावा करते हैं वह न केवल स्वयं भ्रमित होते हैं बल्कि दूसरे को भी भ्रमित करते हैं। सच बात तो यह है कि आजकल समाज में जिस प्रेम की चर्चा की जाती है वह केवल मनुष्य की वासनाओं से उपजा एक क्षणिक भाव है। सच्चा प्रेम तो निरंकार परमात्मा को किया जा सकता है। परमात्मा प्रेम का सच्चा रूप है। जो इंसान परमात्मा से प्रेम करते हुए उसकी भक्ति करता है वही सभी से प्रेम कर सकता है। जो केवल मनुष्य से प्रेम करते हैं वह संकीर्णता से घिरे होते हैं और उनका लक्ष्य केवल अपना स्वार्थ तथा कामना की पूर्ति करना होता है।

चिंतन कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे अनुपमा तिवारी को। इसके साथ ही आज का चिंतन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आराधना कार्यक्रम की ओर। भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत गैर संक्रामक रोग एवं उपचार विषय पर जानकारी। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर नंद कुमार पांडे चंदवा पलामू, भेंट करता है संजय कुमार मिश्रा।
1: स्वागत, मैं हूं संजय मिश्रा, आपको हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजकल बीमारियां भी अजीबोगरीब नाम से आने लगी हैं। हालांकि हमारी परेशानी के लिए वही बीमारियां काफी हैं जो पहले से हमारे बीच। और आपने सुना होगा कि शायद ही आपके घर के आसपास, आपके समाज में वैसे लोग ना मिले।

0: जिनको शुगर नहीं हो, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं हो, तो ये हाइपरटेंशन और डायबिटिक, ये दोनों से बचाव के भी उपाय हमारे चिकित्सक बताते हैं। और ये क्यों हो रहा है, कि इसके कारण हैं, इसकी क्या वजह है और कैसे इससे बचा जा सके, ढेर सारी बातें हैं जो अगर आप इसके प्रति अवेयर रहें, जानकार रहें, जानकारी आपको हो, तो शायद आप आने वाले दिनों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज से बच सकते हैं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, ये सच है कि आज के समय में कहीं भी आसपास हमारे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, शुगर के मरीज दिख जाते हैं। इतनी तेजी से इसके मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह एक चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक आप हमको बताएं कि क्या वजह दिख रही है आपके बीच।
1: हम लोग एक चर्चा करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर के बारे में, तीन बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो नॉन कम्युनिकेबल है या फैलती बीमारी नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली चीज है हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके बारे में हम लोग बात करें, तो उसके बारे में हाइपरटेंशन क्यों होता है और उसका निदान क्या है, और अपने लाइफस्टाइल को अगर चेंज करें तो हम लोग कैसे उससे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करें। तो पहली चीज है कि हाइपरटेंशन होता क्या है, कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर जनरली 120-80 रहना चाहिए, एक स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति को 120-80 रहना चाहिए। अगर 120 से अधिक है, 130-90 है, इसका मतलब वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में चला गया है पेशेंट, तो उसको अपने सचेत होने की जरूरत है। वार्निंग दे रहा है बॉडी, शरीर वार्निंग दे रहा है कि आप सचेत हो जाए, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने वाला है, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। अगर 130-90 आ रहा है ब्लड प्रेशर किसी एडल्ट व्यक्ति का जो स्वस्थ है और एडल्ट है, अगर वैसा आ रहा है तो क्या करनी होगी, उसको अपने सचेत हो जाना होगा, लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। सबसे पहले उसको कि वेट देखना होगा कि आपका वेट कितना है, वजन कितना है, वजन हाइट के अनुसार उसका होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इतना नहीं देख सकते हैं तो आप केवल देख सकते हैं कि हमारा हाइट कितना है, इंच में देखें, और पेट की गोलाई देखें, नाभि के पास पेट की गोलाई देखें, कमर कितनी मेरी है, कमर की गोलाई आपका आधा होना चाहिए, हाइट से आधा होना चाहिए। मान लीजिए आपका हाइट है 5 फीट, तो 12×5=60 होता है, 60 इंच होता है, आपका कमर या नाभि के पास जो चौड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 से कम। अगर 30 से कम है, इसका मतलब कि आप स्वस्थ हैं, आपको हाइपरटेंशन, शुगर होने की संभावना कम है, नहीं होगी। अगर अधिक है तो आप कोशिश करें कि मेरा जो पेट की चौड़ाई है, पेट की गोलाई है, वो आधा से कम रहे, हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, तभी आप इससे बच सकते हैं, दोनों बीमारी से, हाइपरटेंशन से और डायबिटीज से। तो दूसरी चीज कि ये हुई कि आपको बचाव करना होगा। अगर हो ही जाता है ब्लड प्रेशर तो क्या करें, तो डॉक्टर से परामर्श लें कि हम क्या दवा खाएं, और अगर एक बार में बढ़ जाता है, एस्केलेटेड हाइपरटेंशन होता है, उस स्थिति में आपको दवा अवश्य लेनी पड़ेगी, अवश्य खाएं दवा को, और दवा खा करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जिससे कि हम हाइपरटेंशन से और शुगर से बच सकें। दूसरी चीजें हैं कि हम लोग शुगर में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसका भी ध्यान रखें कि जनरली शुगर में चीनी या जो भी रिफाइंड चीजें हैं उसको बंद करें। चीनी हुआ, मैदा हुआ, और जो आपका ये है तेल है, वाइल है, फैट है, ये सबको कर्टेन करें। आफ्टर 30 इयर्स या आफ्टर 40 इयर्स जरूर कम करें। उसको कम करने से क्या होगी कि आप में फैट की डिपोजिशन नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने से क्या होगा कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, वर्क पावर अधिक बढ़ेगा, वर्क अधिक कर पाएंगे। तो ये दो चीजें हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर। इन दो चीजों को कंट्रोल करना हमारे इंडिया में काफी तेजी से महामारी के रूप में

0: फैल रही है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रहे थे कि आप एक साथ बता रहे हैं दोनों को, ब्लड प्रेशर और शुगर, तो ये दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों के होने की वजह मोटा मोटी एक जैसी ही है क्या? जो आपने कहा कि अगर ये दोनों से बचाव चाहिए तो ऐसे अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है।
0: ब्लड प्रेशर और शुगर लगभग सामान्यतः एक ही तरह से चल रहा है। आदमी में मोटापा होगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, दोनों ही संभावना बढ़ जाती है। कारण कि इंसुलिन जो है जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज द्वारा सीक्रेट होता है, इंसुलिन उतनी ही मात्रा में सीक्रेट होती है जितना है कि आपका बॉडी यूटिलाइज कर सके। तो अगर आप अधिक वेट अधिक बढ़ता है तो इसका मतलब इंसुलिन का रिक्वायरमेंट अधिक होगा। इंसुलिन का रिक्वायरमेंट अधिक होगा तो इसका मतलब कि डायबिटीज होगा। शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतनी इंसुलिन नहीं मिल पाएगी, जिसके चलते आप डायबिटीज रोग से ग्रसित होंगे। तो इसीलिए वेट का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, हाइट के अनुसार वेट को कंट्रोल रखें तो दोनों बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, उसे मुक्ति पा सकते हैं।
1: अच्छा, इसके साथ साथ आपने चर्चा किया कि कैंसर से बचाव के लिए भी आप कुछ बताने वाले हैं, तो उसकी क्या वजह है, उससे कैसे बचाव किया जाए?
0: कैंसर से हमारे यहाँ प्रायः कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, ब्रेस्ट का कैंसर होता है फीमेल में, और सर्वाइकल कैंसर होता है फीमेल में, और अदर जो कैंसर होते हैं, जो कॉलोनिक कैंसर होते हैं या दूसरे जगह के कैंसर होते हैं, वो भी कम प्रतिशत में होते हैं, लेकिन जनरली यही ओरल कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, सर्वाइकल कैंसर होते हैं, जो तीन कैंसर होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं। तो पहला ओरल कैंसर में आदमी जैसे खैनी खाता है, खैनी जो बहुत खाते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कैंसरस उसमें होती है, कैंसर सब्सटेंस होता है जो कि कोरोड करता है सेल्स को, टिश्यू को, वहां के जो टिश्यू है उसको कोरोड कर देता है। कोरोड मतलब कि उसको छील देता है। छीलने के बाद टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्टिव में अधिक ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने से अगर कंट्रोल ग्रोथ टिश्यू का होगा, इसका मतलब कि कैंसर है। तो इसीलिए सावधानी बरतनी होगी कि पान, गुड़ाकू, गुल और जो वैसे कैंसरस चीजें हैं सब्सटेंस न खाएं। उसको नहीं खाने से ही ओरल कैंसर से बच सकते हैं। तो यही सावधानी बरतनी होगी कि हम नहीं ही खाएं, जो कैंसरस चीज है उसको नहीं खाएं, तो उससे ओरल कैंसर से बच सकते हैं। दूसरी चीज है कि ब्रेस्ट कैंसर से, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए फीमेल को क्या करना होगा, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होगी। ऐसा नहीं कि आजकल बहुत से होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, उससे क्या होता है कि संभावना बढ़ जाएगी कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो क्या करना होगा कि प्रत्येक महिला को अपना ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन करना होगा। अपने से सेल्फ एग्जामिनेशन करने से कहीं गांठ अगर है तो उसका तुरंत मैमोग्राफी करानी होगी, गांठ का बायोप्सी कराना होगा, जिससे पता चले कि उस गांठ में कैंसर है या नहीं है। तो इसको जांच कराना जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर में। उसी तरह से सर्वाइकल कैंसर होता है, तो सर्वाइकल कैंसर में
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे गैर संक्रामक रोग और उपचार विषय पर जानकारी डॉक्टर नंद कुमार पांडे से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास पे भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में काशी और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव देश के सामने हैं। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब, अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पेंट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि इस वर्ष एक्सरसाइज वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास ड्रोनाथन और जारी ऐतिहासिक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति सहित कई महत्वपूर्ण गतिविधियों के जरिए वायुसेना अपनी युद्धक तैयारी को लगातार परख रही है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra.

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गायन राग ठुमरी जोगिया में और दादरा मिस्र पिल्लू में शोभा गोटू से। स्वर सरता कार्यक्रम का समय है 7:45। कलाकार होंगे चंदन दास। सुबह के 8 बजे हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 8:45 पर पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे गीत गुंजन। सुबह के 9 बजे जोहार पलामू कार्यक्रम। 9:30 का समय है प्रायोजित कार्यक्रम का, आज आप सुनेंगे उमंग कार्यक्रम का 1379वां भाग। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 10:05 पर हिंदी समाचार और मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम 10:10 पर जारी होंगे। दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी समाचार और 2:30 मुंबई केंद्र से विविध भारतीय कार्यक्रम, 2:55 पर रांची केंद्र से हम जुड़ेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली, 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे, 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम, शाम 5 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार, 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे और 5:25 पर पुनः हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा 5:35 पर युवावाणी। चर्चा होगी वायुसेना दिवस और विश्व डाक दिवस पर। वन्य जीवों का संरक्षण कितना आवश्यक, वन्य जीव सप्ताह पर यह चर्चा भी आप सुनेंगे। और साथ ही वार्ता होगी इंटरनेट विशेषताएं और इसके लाभ पर वार्ताकार होंगे रत्नेश कुमार द्विवेदी। शाम 6:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। शाम 6:30 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम होगा। शाम 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर फिर विगतों का कार्यक्रम होगा सुर संध्या। 7:45 पर आप सुनेंगे उजाले की ओर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम वार्ता आपको सुनाएंगे शिक्षा और रोजगार के बीच समन्वय हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम। वार्ताकार होंगे रविंद्र पांडे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म गीत चित्रपट से कार्यक्रम के तहत। 8:30 क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सरहदें। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर उर्दू में समाचार रिले होगी। रात्रि 9:30 विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 10:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे एक रंग कार्यक्रम। रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और सभा की समाप्ति रात्रि 11:10 पर होगी।

हमारे कार्यक्रमों की जानकारी भी आप प्राप्त कर रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग का। इस कार्यक्रम में आए सुनते ही पहले गायन राग ठोबरी जोगिया में शोभा गुट्टू से।

शास्त्र संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत आज भी आप सुन रहे थे शोभा गुरटू को। और अब समय हो गया है स्वर सरिता कार्यक्रम का। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंदन दास को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वर सरिता, कलाकार थे चंदन दास। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यही समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज 8:30 बजे राज्य केंद्र से प्रादेशिक समाचार। आइए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली की यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन।

0: केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन,
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
4: दाग खांच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं, आज वही

0: मार्ग कोची वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
1: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
0: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
2: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
0: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटेडी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई बैठक में डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटेडी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
4: मैं इंडस्ट्री का हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
5: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना

0: की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
1: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
2: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं जा अब्दुल।
0: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्निसाक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्निसाक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
3: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
0: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
2: कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
0: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेइचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57 GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key

0: उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
2: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
1: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
2: क्या कहा, खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोए।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली में। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी होंगे शामिल, रखेंगे राज्य का पक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का निधन, पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रांची के मोरहाबादी आवास पर रखा गया। आज पैतृक गांव नेमरा में होगा अंतिम संस्कार। दुर्गा पूजा से पहले राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की करीब 4 लाख महिलाओं के खातों में भेजी गई राशि। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए राज्य भर में 3 दिवसीय विशेष डिजिटाइजेशन कैंप जारी। मतदाताओं की सुविधा के लिए 10 अक्टूबर को सभी बूथों पर लगेगा मेगा कैंप। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कल रांची के जेएससीए स्टेडियम में। अभ्यास सत्र के लिए आज मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल होंगे और वे राज्य का पक्ष रखेंगे।
4: ये जो मीटिंग जीएसटी काउंसिल की जा रही है, क्या क्या पॉइंट्स है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे यहाँ जो MMDR एक्ट से जो लॉस है, उसके बाद जो मंडी का नाम बदल करके जी राम जी योजना लागू किया गया, उससे जो स्टेट को इकोनॉमिकल लॉस है, और फिर जैसा कि सभी जानते हैं कि जीएसटी रेशनलाइजेशन के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर के 22,000 करोड़ रुपया झारखंड को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। इन सब विषयों को सामने रखा जाएगा।
3: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मोरहाबादी स्थित आवास पर रखा गया है, जहां तमाम नेता और शुभचिंतक पहुंच रहे हैं। पार्थिव शरीर को आज उनके पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा सहित कई दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दुमका में भी उनके निधन पर गहरा शोक है।
5: रूपी सोरेन का दुमका से गहरा जुड़ाव रहा था। उन्होंने अपने जीवन में एक ही बार 1999 में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव जीत नहीं पाई थी। दुमका की खिजुरिया स्थित आवास पर शिव सोरेन और रूपी सोरेन ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताया था। उनके निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अलावा अनेक सामाजिक राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। आरके नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
3: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी माता रूपी सोरेन के निधन पर बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाबा के जाने के बाद माँ ही मेरा सबसे बड़ा सहारा थी, जो आज प्रकृति की गोद में विलीन हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उनका पुत्रवत स्नेह हमेशा याद रहेगा।
6: ये खबर सुन के निश्चित रूप से मैं स्तब्ध रहा। रूपी चाची वो भी संघर्षशील महिला थी और दुसुम गुरु जी को दुसुम बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और मेरा भी बहुत व्यक्तिगत उनसे संबंध था। निश्चित रूप से झारखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई और हम कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन में गुरु जी की तो महती भूमिका थी, रूपी सोरेन जी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी।
3: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके घर पर बेहोश मिलने के बाद

0: उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिंदा, क्रांतिवीर और वेलकम जैसे फिल्मों के लिए मशहूर नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची की करीब 4 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सितंबर महीने की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। प्रत्येक लाभुक के खाते में 2500 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि त्योहार से पहले हुआ यह भुगतान परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत देगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक राज्य भर में 3 दिवसीय विशेष डिजिटाइजेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद 10 अक्टूबर को सभी बूथों पर मेगा कैंप लगाया जाएगा जहां मौके पर ही समस्याओं का समाधान होगा।
1: 7, 8, 9 तारीख को सभी जगह पर झारखंड में डिजिटाइजेशन कैंप आयोजन किया जा रहा है। कभी भी आवेदन देने के लिए फॉर्म 6 जमा कर दें ताकि SAR का रोल में आपका नाम लेके आ सकते हैं। साथ में 10 तारीख को सभी पोलिंग स्टेशन में मेगा हेल्प डेस्क आयोजन किया जा रहा है। किसी भी पात्र भारत नागरिक का अपने नाम दर्ज करने में, टेस्ट में जवाब देने में कोई इश्यू होगा उसी दिन में आएंगे, वहाँ पर सबका सुविधा मिलेगी।
0: धनबाद में सांसद ढुल्लू महतो की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में सांसद ने 1.5 वर्ष के अंतराल पर बैठक होने पर नाराजगी जताई और जिला प्रशासन से हर 3 माह में बैठक कराने को कहा। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों का अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने की बात कही है।
2: मोस्टली जो मुद्दे थे लास्ट दिशा की मीटिंग में वो सब पर चर्चा हुई, उसमें जो समाधान आना था वो सब आया। बड़े योजनाएं हैं उस पर क्वेरी हुआ था, उसका जवाब हम लोग दिए। 5 से 6 योजनाएं हैं जो लंबित है, तो 1-2 कॉन्ट्रैक्टर की वजह से लंबित है, तो हम लोग उसको टर्मिनेशन करने के लिए राज्य सरकार को लिखे हैं। अब जो मामला है उसमें राज्य सरकार स्तर से उस पर कार्रवाई हो रही है, हम लोग को पूरा आशा है, विश्वास है कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में आज कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल रांची के JSCA स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें रांची पहुंचकर तैयारियों में जुट गई है और आज स्टेडियम में अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी। लखनऊ में पहला मैच 8 विकेट से जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। इधर मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। JSCA स्टेडियम और खिलाड़ियों के होटल के आसपास पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि मैच के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे।
3: करीबन 2500 के आसपास बल हमें बाहर से हमने मंगवाया है और यहाँ पे करीबन 5000 के आसपास टोटल बलों की जो है तैनाती की जा रही है, जो कि ट्रैफिक से लेकर स्टेडियम तक विभिन्न जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को जो है देखेगी। काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया गया है और हमारी ये कोशिश है कि जो राज्य के लोग हैं उनको एक सुगम तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से एक सुरक्षित वातावरण में मैच का आयोजन ले सकें।
0: और अब अखबारों की सुर्खियाँ। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, CM हेमंत की मां रूपी सोरेन का किडनी फेल होने से निधन, रात 8:40 पर ली अंतिम सांस। हिंदुस्तान ने लिखा है, DGP नियुक्ति में केंद्र की अर्जी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रभात खबर के शब्द हैं, तीन युवा आदिवासी कवियों को मिलेगा जयपाल जूलियस हना साहित्य पुरस्कार। दैनिक जागरण लिखता है, रांची पहुंची भारत वेस्ट इंडीज की टीमें, अभ्यास सत्र आज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली में, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी होंगे शामिल, रखेंगे राज्य का पक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी

0: खातों में भेजी गई राशि। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए राज्य भर में 3 दिवसीय विशेष डिजिटाइजेशन कैंप जारी। मतदाताओं की सुविधा के लिए 10 अक्टूबर को सभी बूथों पर लगेगा मेगा कैंप। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल रांची के JSCA स्टेडियम में। अभ्यास सत्र के लिए आज मैदान पर उतरेंगी दोनों टीमें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है। रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
2: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
1: विटामिन ए? वो क्या होता है बहन?
2: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
1: 4 वर्ष।
2: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ। ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: तुम्हारी माताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
5: क्या बताऊं भाई, कल माताजी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
4: अरे डायल करो 104 नंबर।
5: वो क्या है भाई?
4: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: हमारे दिल्ली केंद्र और रांची केंद्र से आप सुन रहे थे समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। आज इस कार्यक्रम को हमने समर्पित किया है फिल्म अभिनेता राजकुमार साहब पर। जी हाँ, राजकुमार, जिनका असली नाम कुलभूषण पंडित था, जन्म हुआ 8 अक्टूबर 1926 को लोरालाई बलूचिस्तान में, और स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद वे मुंबई आ गए थे। अभिनय में आने से पहले वे मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। राजकुमार ने साल 1952 में फिल्म रंगीली से अपने अभिनय की शुरुआत की। पहचान उन्हें मिली मदर इंडिया फिल्म से, जो काफ़ी सफल फिल्म रही। उन्होंने अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में 70 फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में पैगाम, दिल एक मंदिर, वक्त, हीर रांझा, पाकिजा, सौदागर और तिरंगा शामिल हैं। अपने अनोखे अंदाज में संवाद बोलने के कारण और भारी आवाज़ के कारण वे अलग पहचान रखते थे। राजकुमार साहब को उनके जन्मदिवस पर हम नमन करते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आज का यह कार्यक्रम समर्पित था फिल्म अभिनेता राजकुमार साहब को, जिनका आज है जन्मदिन। आज उन्हें हम श्रद्धापूर्वक याद कर रहे थे। इसके साथ ही आज का गीत गुंजन कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जोहार, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सुविचार से, ताकि आप बदल सकें अपने जीवन को। जी हाँ, ये सुविचार जिन पर अगर हम करते हैं अमल तो काफ़ी कुछ बदल जाता है हमारा जीवन। किस्मत सिर्फ मौका देती है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत पूरी दुनिया को चौंका देती है। जी हाँ, इसलिए आप किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। बात करें मौसम की, तो कल रात को धुआंधार बारिश के बाद आज मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन फिर भी बादल छाए हुए हैं और फिर दोपहर में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग के द्वारा। तापमान की बात करें तो अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, और कल यानी कि 9 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो मौसम की इस जानकारी के बाद हम बात करते हैं एक दुखद खबर की, जो फिल्मी दुनिया से होकर आई है आज अहले सुबह। जी हाँ, आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर साहब का निधन हो गया है। नाना पाटेकर ने हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं और इन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। उन्होंने 1978 में अपनी एक्टिंग डेब्यू किया था और उनकी पहली फिल्म गमन थी, लेकिन 1986 में रिलीज हुई अंकुश ने उन्हें पहचान दिलाई और उन्होंने अपने करियर में हिंदी के साथ साथ और भी कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया, जिनमें मराठी प्रमुख है। परिंदा, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ संजीदा ही नहीं, कॉमिक और नकारात्मक किरदार भी निभाए। परिंदा में एक गैंगस्टर के किरदार ने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित किया और फिर प्रहार, तिरंगा और क्रांतिवीर जैसे फिल्मों में एक्शन अवतार भी उन्होंने दिखाया। नाना पाटेकर साहब ने आखिरी बार विशाल भारद्वाज की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ओ रोमियो में अपना अभिनय किया था। यह फिल्म 2026 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने अपना अभिनय किया और नाना पाटेकर को फिल्म परिंदा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था। तो वहीं साल 2013 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नाना पाटेकर ने 2026 में प्रकाश झा की पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज संकल्प से OTT पर भी डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने मैट श्रॉफ, कन्हैयालाल का मुख्य किरदार निभाया था। वेलकम और वेलकम बैक में उदय शेट्टी का किरदार निभाकर वे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए और अपने करियर के दौरान उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड जीते। सामाजिक कार्यों के लिए भी चर्चित रहे नाना पाटेकर साहब। फिल्मों के अलावा अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी वे चर्चा में रहे। किसानों और ग्रामीण इलाकों में जुड़े सामाजिक कार्यों के लिए भी उनका खूब नाम हुआ। हाल के सालों में वे फिल्म और सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय थे। वे अक्सर गांव में रहना पसंद करते थे। सितंबर 2026 तक उनके बारे में लगातार खबरें प्रकाशित होती रहीं। उनके निधन को लेकर भारतीय फिल्म जगत में शोक की लहर है और यह एक अपूर्णीय क्षति है। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं इस गीत के जरिए जो उन पर फिल्माया गया था, राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म में।

नाना पाटेकर साहब को पुनः नमन करते हैं और आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का उधर निधन हो चुका है, जो शिबू सोरेन साहब की पत्नी थी। दिवंगत देशों गुरु शिबू सोरेन की धर्म पत्नी रूपी सोरेन जी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और दिवंगत देशों गुरु शिबू सोरेन की धर्म पत्नी रूपी सोरेन का बुधवार को रांची के बरियातु रोड स्थित हेलवी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता और डॉक्टर उज्ज्वल राय ने दी। वे करीब 80 साल की थी। उनके निधन की खबर के बाद झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है। गढ़वा भोनासपुर विधानसभा क्षेत्र के केंद्रों पर डिजिटलाइजेशन, जन सुनवाई और मतदाता पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लिया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण और डिजिटलाइजेशन कार्यों का पलामू प्रमंडलीय आयुक्त कुमार सहाय ने औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने 80 गढ़वा और 81 भोनासपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया। गढ़वा पहुंचने पर उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने सर्किट हाउस में पुष्पगुच्छ देकर आयुक्त का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आयुक्त ने 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के आरके गोविंद प्लस टू हाई स्कूल और पीएमसी उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाटा 81 भोनासपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री वंशीधर नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय और पंचायत सचिवालय नरही का निरीक्षण किया। रांची पहुंचे भारत वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, आज करेंगे अभ्यास, दूसरा T20 मैच कल। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच शुक्रवार को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। इसके लिए भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें बुधवार की दोपहर रांची पहुंची। यहां फैंस को लोकल बॉय ईशान किशन से काफ़ी आस है। ईशान किशन ने हाल ही में एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद 80 रन की पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में 20 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच में ईशान ने 37 रन की नाबाद पारी खेली। अब फैंस को दूसरे मुकाबले में भी उनसे काफ़ी आस है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे और संयुक्त सचिव शहबाज नदीम बुधवार दोपहर खिलाड़ियों का स्वागत करने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। चंद्रपुरा में बनेगी 800 मेगावाट की दो इकाइयां, 1600 मेगावाट बिजली परियोजना को मिली रफ्तार। लार्सन एंड टुर्बो को मिला मुख्य निर्माण कार्य का प्रारंभिक आदेश। दामोदर घाटी निगम और कोल इंडिया लिमिटेड की है संयुक्त पहल। झारखंड में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी परियोजना ने आगे कदम बढ़ाया है। बोकारो जिले के चंद्रपुरा में प्रस्तावित 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के मुख्य निर्माण कार्य के लिए लार्सन एंड टुर्बो को प्रारंभिक आदेश दिया गया है। यह परियोजना दामोदर घाटी निगम DVC और कोल इंडिया लिमिटेड की संयुक्त पहल है। चंद्रपुरा में बनने वाले इस नए बिजली घर में 800 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित की जाएंगी। परियोजना में आधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अधिक दक्षता के साथ बिजली उत्पादन करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। घर घर सत्यापन के दौरान पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करें, यह कहना है निर्वाचन पदाधिकारी का। पांकी विधानसभा क्षेत्र के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड सभागार में चल रहे मतदाता सूची डिजिटाइजेशन एवं सत्यापन कार्य का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह से शेखावत ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने BLO और संबंधित कर्मियों से बुधवार प्रपत्र 6 के संग्रह, डिजिटाइजेशन तथा सत्यापन कार्य की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही कार्यों में तेजी लाने और पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया। उपायुक्त महोदय ने कहा कि SIR के दौरान कोई भी योग्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल आयु पूरी कर चुके पात्र भारतीय युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया गंभीरता से पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने BLO को घर घर सत्यापन के दौरान पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि कोई योग्य नागरिक सूची से बाहर न रह जाए। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख और BLO तथा अन्य कर्मी मौजूद थे। आलू की बुवाई में आई तेजी, बाजार में यूपी से पहुंच रहे हैं बीज। कोल्ड रूम संचालित नहीं होने से सुरक्षित भंडारण को लेकर किसान चिंतित। मोहम्मदगंज प्रखंड
क्षेत्र में आलू की बुवाई के काम में किसान जुट गए हैं। इसके लिए स्थानीय बाजार में उत्तर प्रदेश के कन्नौज की मंडी से आलू बीज की 35 टन की खेप लेकर ट्रक पहुंचने लगे हैं। किसानों ने बताया कि मक्का की कटाई और भदई फसलों की बुवाई नहीं हो पाने से खाली पड़े खेतों को तैयार कर आलू बीज की बुवाई की जा रही है। बाजार में आलू बीज का खुदरा मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि थोक में 50 किलोग्राम की बोरी 800 रुपये में मिल रही है। क्षेत्र में करीब 6-7 ट्रक आलू बीज की खपत होती है। दुर्गा पूजा को लेकर डीएसपी ने पंडालों का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन, अग्निशमन और श्रद्धालुओं के आवागमन का लिया जायजा। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बुधवार को डीएसपी राजेश यादव ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन, अग्निशमन उपकरण, प्रवेश और निकास मार्ग तथा श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियों का जायजा लिया। डीएसपी ने पूजा समितियों के सदस्यों से व्यवस्था की जानकारी लेते हुए सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंडाल के आसपास पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन के लिए पानी और बालू की व्यवस्था रखने तथा आपात स्थिति में आवागमन का रास्ता खुला रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। पूजा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए मुख्य मार्गों पर अनावश्यक जाम लगने देने और वाहनों के व्यवस्थित परिचालन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। पुलिस पदाधिकारियों ने पूजा समितियों से पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में

संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। आप भी श्रोताओं किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई भी अगर आपको संदेहास्पद कुछ भी दिखे तो आप जरूर जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करें। कम से कम 100 नंबर आप डायल कर सकते हैं और यह सूचना पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। खुद कोई भी निर्णय लेने से बचें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। किसी भी तरह की अफवाह कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती है और सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा की तैयारियाँ करें। आज सुबह सुबह एक बेहद दुखद खबर आई नाना पाटेकर साहब को लेकर। वेलकम बैक फिल्म का यह गीत जो अनिल कपूर के साथ उन पर फिल्माया गया था, आइए हम आपको सुनवाते हैं।

नाना पाटेकर साहब को पुनः हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। और पलटते हैं अब इतिहास के पन्ने, आज के इतिहास में क्या कुछ है दर्ज, आइए जानते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस और प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद की पुण्यतिथि के रूप में 8 अक्टूबर का विशेष महत्व है। 1919 में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया था। आज ही के दिन 8 अक्टूबर 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते से जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए थे। 1989 में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1998 में भारत की फ्री स्टाइल महिला पहलवान दिव्या काकरन का जन्म हुआ था। साथ ही प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार का जन्म भी 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था। 2020 में आज ही की तारीख को लोजपा नेता रामविलास पासवान का निधन हुआ था। 1990 में भारतीय राजनेता कमलापति त्रिपाठी का निधन आज ही की तारीख को हुआ था। आज भारतीय वायुसेना दिवस, वन्य जीव सप्ताह और विश्व वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
3: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ,
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
0: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: ₹10,00,000 की लॉटरी मुझे।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इसके साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का और प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की।
8: जोहार पलामू।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुबह

0: चार भेजा है, वो लिखते हैं।
1: वो लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से, रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
1: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
0: जी,
1: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
0: जी।
1: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल,
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
1: जी।
0: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
1: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का, तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया, जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
1: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: जी, तो श्रोताओ, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
0: जी।
1: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
0: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओ, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
1: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
0: जी, तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
0: जी,
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
0: जी,
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
0: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
0: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
1: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
0: और इसे प्रदान कौन करता है?
1: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
0: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
1: जय हिंद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
4: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
2: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के

0: अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
1: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
0: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
1: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
0: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? हाँ
2: क्या करूँगी, गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? ओह तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब

0: भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: आणि चलते चलते
1: जल्दी जल्दी बड़ा
2: करके अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
3: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
0: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
3: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
0: हाँ।
3: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
0: और क्या
3: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: हाँ?
2: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
3: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
2: अब, आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
3: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
1: चलो चलो
0: जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और
4: इसके साथ ही आज का प्रायोजित कार्यक्रम
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
6: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग को पक्के किनारे वाले 2 लेन के राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमरीका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
0: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा। रेल संख्या 04083 नई दिल्ली कटरा 9 और 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी की रेल 04084 कटरा नई दिल्ली 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। 1978 में आई फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को और अग्निसाक्षी में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने काफी सराहा।
2: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत नेता को निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. The event showcases India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar was reportedly found unconscious at his home and was immediately rushed to a nearby hospital. As per preliminary analysis, doctors attempted to revive him for nearly 45 minutes, but he did not respond to treatment. Patikar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema, with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi today expressed grief over the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema, Nana Patekar. In a social media post, the Prime Minister said that Mr. Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and gave characters that will be remembered for generations. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Established on 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defense for decades to come. On this occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have extended greetings to all air warriors, veterans and their families. India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. Government has sanctioned 993.64 crore rupees for the development of National Highway 10 between Rangpo and Ranipul in Sikkim. According to Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, the project will upgrade the corridor into a two-lane highway with paved shoulders, with major engineering works planned to improve safety and resilience in the challenging Himalayan terrain. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. In table tennis, Indian paddlers Manush Shah and Diya Chitale created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semi-finals of a WTT Grand Smash after beating Romania's Edward Inescu and Bernadette Soz 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seeded Indian duo won the quarterfinal 11-9, 13-11, 11-3. And that is the end of this news bulletin.
4: लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था
5: जी जी
4: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी एज द वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं जब वो उनके अंदर इंप्रूवमेंट होता है प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है ऑल ऑफ दैट तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
5: जी
4: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में पिथौरागढ़ में था एक्चुअली कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे वहां से शुरू हुई जी
5: तो अब यहां पर आपने बहुत सारा जिक्र किया गाने का भी जिक्र किया मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं तो यहां पर कोई गाना होना चाहिए बताइए कौन सा गाना चाहिए
4: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माय हार्ट है और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ
5: जी जी
4: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूं मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत जिसे बोलते हैं ना वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे
5: जी जी
4: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा मतलब
5: लिटरली
4: उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें इतना देखा मैंने मकबूल
5: क्या बात है
4: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूं। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूं अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूं, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू Specifically ask me any of the song. I love all the songs. I can sing any one of it. I won't mind.
5: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
4: चलिए तो मैं पहले हृदय में जिनके सीताराम ही गा देता
5: हूं। जी एक लाइन सुना दीजिए।
4: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
5: जी

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के। तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया? कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में
0: जी,
1: वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज़ बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं, पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयूज, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए, तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा, तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
0: जी जी जी।
1: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके ओके, तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चले गए, और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना

0: अपनी या माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
1: अभी सुनाइए
0: हनुमान चालीसा चैट,
1: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है, तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहाँ पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए। तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं
1: तो
0: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, बट मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपके सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री निकोले बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। तो आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है, पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: ईस्ट
0: को ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है, और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुमरे पासा, सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुमरे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों सुरभूप, हृदय भसों सुरभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसा लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धियां अवनीति दाता, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं, और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां, जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं, क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता, तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको एक वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे अस्कै श्रीपति कंठ लगावे, जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे, इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहां पे जो टेंपल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000 साल पुराने टेंपल्स हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज ही इज पॉपुलर, कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे, बराक ओबामा,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, डर से निजात पाने के लिए कहा जाता है, हम सब भी वो करते, डर लगता
0: था, डर लगता था, हनुमान चालीसा पढ़ना
1: शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा अंधेरे कमरे में पार करना है
0: करेक्ट,
1: तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना
0: है। वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
1: जी जी।
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे जी,
1: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते
0: हैं? मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ
1: जी जी, प्लीज सुनाइए जी जी।
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस।

राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा,

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे, बट जी
1: गाने की बात चलिए, हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन के गलियारों में। वहां आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे, या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के, फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर
0: इंजीनियर आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूज डेवलप, फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता, तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी तिशु की, एक और तिशु के बाद अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाक जी वहां पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहां पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग ऑन इट, एंड आई डू इट प्राइमरली फॉर माई सेल्फ। तो मतलब वो कम्प्लीटली मेरे उसको कमर्शलाइज करता नहीं हूँ, म्यूजिक को कुछ भी कमर्शलाइज नहीं करता। सो इट्स अ वेरी सोल सेटिस्फाइंग सॉर्ट ऑफ एन इवेंट फॉर मी एवरी डे। लेकिन नेक फॉर म्यूजिक, फाइंडिंग ग्रेट म्यूजिक, रिकग्नाइजिंग ग्रेट टैलेंट, म्यूजिकल टैलेंट इज प्रॉब्ली वन आर्ट आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ मतलब मल्टीपल ईयर्स, डेकेड साइल से। तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: था। तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी। तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल। तो ये कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, इफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इंफॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे, मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री, कि लिप सिंकिंग करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का। 3rd week ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं, अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 week तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी, फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हो गए 4th week से,
1: और गाने बजने,
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ। और रील बनने लगे,
0: रीले बनने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, अब जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को
0: जी। मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि ही सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ। शंभो शिव शंभो।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: में, और
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना, सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं उनके भी, म्यूजिकल तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ
1: थप्पड़
2: के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे, और वो उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़
2: तो ये अभी की फिल्म्स हैं, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म्स बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम्स उन्होंने चूज किए, तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते, और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लेके, फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया, और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ, और हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतने ही उनके लिए हृदय में उतने ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी,
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
2: जी जी,
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: हाँ तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है, तो बुंदेली मुझे चूके, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था, तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हुए किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा मैं काफी दिन से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो, मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के बाद सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं, और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था, तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो, फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे, तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ इसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट, और वो लोग बोल रहे थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पे कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट, कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें
1: जी जी,
2: सागर में नैया डार दे, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद है,
2: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दे, सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार देगा, और हनुमत कौन है खेवनहार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवनहार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां में बैठन हारी
1: जी।
2: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवनहार कौन है, हनुमत खेवनहार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे, आप ही खेवनहार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंपलीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स थी, पता नहीं अभी देखेंगे तो सकता है मिलियन हो गई या 5 मिनट के हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट, गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना, और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही।

0: दई।
1: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
0: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेज आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
1: दिख जाता है
0: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
1: क्या बात है।
0: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो सेट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है। देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव। जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: मोबाइल में है, जबकि
0: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, जो कनेक्ट फील होता है ना आपको,
1: जी,
0: आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो। हाथ से जब लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस। एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
0: होते रहते हैं।
1: सही कह रहे हैं। और ये बात है, कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में, ये बहुत जरूरी है।

0: यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम फेवरेट,
0: प्रेम पुजारी,
1: प्रेम पुजारी का गाना है,
0: साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार, तो सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था, और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं
1: जी।
0: बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहाँ पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रांग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती है, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो तो ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा खोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं और फिर वो चली जाती हैं वहां से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के लिए नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जब मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहाँ से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है
0: जी, जी।
1: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पानसिंह तोमर और बैंडिट क्वीन।

0: वगैरह जो फिल्म्स हैं इन सब के अंदर इनफैक्ट वो नत्था वॉज यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो
1: जी,
0: एक
1: जी,
0: एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे जिनके जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने वो एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना एक एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
1: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।
2: हर हर महादेव।

आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग

0: इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना, बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
6: विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

0: estarán.
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओं, आज हमारे बीच फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे। उन्हें याद करते हुए उन्हीं की यादगार फिल्म गुलाम ए मुस्तफा से आपको ये कव्वाली सुनवाते हैं।

आनंद बख्शी की लिखी ये कवाली आप सुन रहे थे गुलाम मुस्तफ़ा फिल्म से, इकबाल साबरी और अफजल साबरी के साथ साथियों की आवाज़ें थी।

0: पंकज उदास को अभी आपने सुना, तर्ज थी पंकज उदास की।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: आई लव फाल्गुनी, इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। फाल्गुनी पाठक की आवाज थी, महबूब के बोल ललित का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा।

0: है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं। संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

शमीम जयपुरी की ये रचना आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज में। ये थी पूर्वी दादरा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

0: फिल्म निकाह की ये गजल आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, हसन कमाल के बोल थे, रवि का संगीत था।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अमजद नदीम की तर्ज थी, शब्बीर अहमद का लिखा यह गीत आपने सुना, रेखा भारद्वाज की आवाज में, फिल्म थी जिंदगी 50-50।

0: फिल्म लम्हे में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। श्रोताओ, रंग तरंग ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें याद करते हुए आपको सुनवाते हैं उन पर ही फिल्माया गया ये गीत।

0: फिल्म वनवास से ये राम धुन आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाजों में, विजय प्रकाश और महालक्ष्मी अय्यर की भी साथ में आवाजें आपने सुनी। सईद कादरी के बोल थे, मिथुन की तर्ज थी। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। अपनी सहज और बेबाक अदायगी से उन्होंने हम सभी का दिल जीता। हिंदी और मराठी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार रहे नाना पाटेकर के लिए जाने माने फिल्म निर्देशक पार्थो घोष, जिन्होंने फिल्म 100 डेज, अग्निसाक्षी, तीसरा कौन, गुलाम मुस्तफा जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं नाना पाटेकर के लिए।
1: नाना पाटेकर साथ कैसा आपका संबंध रहा?
2: नाना को साथ हमारे बहुत ही अपने तरीके से एक दोस्ती हो गए।
1: नहीं, कहते हैं कि उनको समझना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है।
2: नहीं, वो क्या है, वो एक बार उसको जब दोस्ती हो जाते फिर उसको साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। फिर वो कोई चीज में कुछ बात ही नहीं करता, और उसको एक बार विश्वास हो जाते हैं।
1: हाँ।
2: जो सामने वाले वो अपने काम जानते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: तो फिर वो कभी भी डिस्टर्ब करते नहीं, और उसको साथ ऐसे दोस्ती हो गया था, मतलब वो सारा दिन में तो 10 बार फोन, और खाना कुछ बनाया, खुद का खाना बनाने का बहुत
1: अच्छा,
2: शौकीन
1: अच्छा।
2: था, मैं खाना खाने का शौकीन था।
1: हाँ।
2: तो खाना बनाए तो पार्थ तू आ जा, तू कहां बैठा है, क्यों नहीं आ रहा है, तेरे लिए मैं ये बना रहा हूँ, और उसको मुझे खिला के उसका बहुत खुशी होता।
1: अच्छा, संतुष्टि मिलती
2: है। बोलते तू खाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खाता है। वो खाने अच्छे बनाते हैं यार, वो बहुत मेहनत करके बनाता था।
1: अच्छा
2: है, बहुत दिल से, मतलब
1: जितनी मेहनत वो फिल्मों में करते हैं
2: वो बहुत मेहनत करते हैं।
1: अच्छा।
2: वो मतलब सचमुच वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है।
1: हाँ।
2: ये तो उसने दिखाई दिया,
1: बिल्कुल थिएटर से आए हैं,
2: थिएटर से आए
1: मेहनत की,
2: और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी। उसका जिंदगी में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
1: अच्छा।
2: कुछ नहीं चाहिए उसको, अगर बोलो तो महीना दो महीनों घर उसका अपना वो छोटे से फ्लैट के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। कपड़े का कोई शौक नहीं, कोई खाने का शौक नहीं, ना कहीं जाने का शौक है, ना होटल में जाने का शौक है, ना बाहर घूमने का शौक है।
1: नाना के साथ कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहेगी, याद रहे सब कुछ?
2: नाना को साथ मेरे जिंदगी का बहुत सारे घटनाएं हैं।
1: हाँ।
2: तो पर एक मत मजे का घटना है जो मैं कभी कभी मैं याद करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। उसमें एक चीज पता चलता है जो आदमी कितने अलग है।
1: अच्छा।
2: उस घटना से वो घटना ये था, जो मुझे एक दिन बोला नाना ने, तो चल मैंने एक जगह देखा है, फार्म हाउस बनाएंगे।
1: हाँ।
2: है पुणे का पास है, चल तुझे लेके चलते हैं, देखते हैं, देख के आते हैं।
1: हाँ।
2: और मैं बोला अच्छा, बोले तुझे तो कमाल की लगेगा, मुझे मालूम है। उसको लगता वो उसको मालूम था कि मैं कविता भी तरह लिखता।
1: हाँ।
2: और मेरे नेचर उस तरह है।
1: हाँ।
2: नेचर। तो हम लोग साथ में पुणे गए, तो वहां पर बहुत बड़ा नदी था, डैम था। तो मैं बोला यहाँ पर कहीं जमीन ले रहे क्या?
1: हाँ।
2: जगह तो अच्छा लग रहा है।
1: हाँ।
2: बोले नहीं रे, यहाँ नहीं है, अभी और आगे जाना है। बोला आगे कैसे जाना है, अभी तो खत्म हो गया, मतलब जगह हुआ एंड हो गया।
1: अच्छा, अच्छा।
2: तो बोले नहीं, अभी हम लोग बोट है, अभी।
1: हाँ।
2: बोट देख नीचे भाई, बोला बोट तो है। बोले बोट से हम लोग क्रॉस करेंगे।
1: हाँ।
2: वहां पर हमारे एक दोस्त ऑलरेडी वो पहाड़ पे बना है।
1: हाँ।
2: तो बोला अच्छा तू वो लेना चाहता है। बोला नहीं चलना तू अभी मुझे लेके बोट पे, हम लोग पूरा नदी क्रॉस किया, काफी बड़ा नदी क्रॉस करके हम लोग आए एक पहाड़ के ऊपर। उसका दोस्त ने बहुत अच्छे जगह बनाए। तो अच्छा, और बरसात का टाइम, जस्ट गर्मी खत्म हुआ, मुंबई का पहला बरसात जैसे हुआ उस समय, पता नहीं बारिश से बहुत लगा हुआ है।
1: अच्छा अच्छा।
2: मतलब बरसात होगा तो मैं भीगूंगा जरूर।
1: क्या बात?
2: अपने छत पे हो।
1: हाँ।
2: या रास्ते पे हो।
1: हाँ।
2: या कहीं भी हो।
1: हाँ।
2: मुझे भीगना है।
1: अच्छा।
2: मुझे छतरी नहीं चाहिए।
1: हाँ।
2: तो मुझे बहुत भीगने का शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाहर आ गए, भीगा पानी में एकदम, पर घनघोर बरसात।
1: हाँ।
2: तो भाई बोला अभी क्या करें? बोले अभी चलेंगे ना जगह देखने। बोला अभी जगह देखने कहाँ जाएंगे अभी? बोला अभी तुझे बारिश में तो प्रॉब्लम। बोला मुझे एंजॉय हो रहा है यार, क्या खूबसूरत बारिश था, मजा आ गया। फिर हमने फिर बोट पे चढ़ा,
1: फिर बोट पे
2: स्पीड बोट और दोस्त का।
1: अच्छा।
2: तो फिर स्पीड बोट

0: नदी का उल्टा तरफ, नदी का तरफ मतलब जहां से नदी शुरू हुआ उस तरफ,
1: उस तरफ चल दिया,
0: चारों तरफ से पहाड़
1: हाँ,
0: और नदी और बारिश
1: हाँ,
0: और कुछ नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है
1: हाँ।
0: तो मैं बोला कितने दूर जाना है, बोले 10 किलोमीटर, बोले नदी में 10 किलोमीटर जाना है
1: हाँ।
0: उसका बाद तेरा वो जगह आएगा जहां तू फार्म हाउस बनाएगा। अल्टीमेटली 10 किलोमीटर अंदर चल गए नदी में
1: हाँ।
0: और दोनों बाजू कुछ नहीं, मतलब एक आदमी नहीं, एक घर नहीं, कुछ नहीं। सडनली एक जगह पे आके गाड़ी बोले बोट रुका
1: दिया हाँ।
0: और बोले ये जो पहाड़ है नाना
1: हाँ।
0: ये तेरे इसके लिए मैं बोल रहा था, तुझे तुझे पसंद है।
1: अच्छा,
0: मैं बोला नाना ये क्या, ये तो पहाड़ है, यहाँ पर तू एक आदमी आएगा कैसे,
1: यहाँ फार्म हाउस कैसे
0: बनाएगा? नहीं बनाएगा, फिर बनाएगा तो चल कुछ भी करके तू बनाएगा, पर यहाँ तो आदमी क्या कोई, मतलब मुझे बर्ड्स भी नजर नहीं आ रहे, क्या रहेगा कैसे तू
1: हाँ।
0: बोलते पर तो मतलब मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ
1: हाँ।
0: मुझे डिस्टर्ब चाहिए ही नहीं, बोले डिस्टर्ब नहीं चाहिए बात अलग है हाँ। कम से कम दुनिया से लिंक तो होना चाहिए
1: हाँ।
0: ये तो दुनिया का बाहर का जगह, मैं तो ये तेरे साथ नहीं हूँ भाई, ये जगह तुझे मैं नहीं बोलूंगा, तुझे ये जगह तो ये है नाना का क्या।
1: नाना का
2: श्रोता जाने माने निर्देशक पार्थ घोष नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रहे थे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई। बस एक गीत आपको सुनवाएंगे और उसके बाद सुनवाएंगे पद्म भूषण सई परांजपे, यानी निर्देशिका सई परांजपे अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रही हैं। ये थोड़ी देर में बस आपको सुनवाते हैं।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी मयूर सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी पत्थर के सनम। श्रोताओं, नाना पाटेकर को लेकर जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सई परांजपे, जिन्होंने चश्मे बद्दूर और स्पर्श जैसी फिल्मों को बनाया है, आप जानते ही हैं क्या कह रही हैं नाना पाटेकर के लिए। आइए सुनते हैं।
1: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
2: जी।
1: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है
2: जी, जी।
1: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें। लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
2: जी,
1: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
2: जुनून,
1: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि वो ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
2: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
1: हाँ, और मैं आसपास में कुछ अपना करती, उसने कहा तुम करो, तुम्हारा मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना ले, करना रपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई।
0: ये थी जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सई परांजपे जो बातें कर रही थी नाना पाटेकर के लिए। आपको ये रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने सुनवाई विविध भारती के संग्रहालय से, जिसमें ये दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुनी, फिल्म निर्देशक पार्थ घोष और पद्म भूषण सई परांजपे की बातें थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म महबूबा का दो गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4 plus 1 is equal to 100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस 1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4 + 1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्म लावारिस का ये गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चितचोर फिल्म का गीत आपने सुना येसुदास की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आदमी का नगमा, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बने के बोल, नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर का गाया आदमी फिल्म का गीत आपने सुना, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। यादों की महफिल ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न हुआ। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said digital connectivity has powered education, healthcare and government services. Mr. Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said today even children in remote villages and from poor families are able to access quality knowledge. Mr. Modi said, over the past 10 to 12 years, the mobile phone has emerged not only as a medium of modern communication, but also as a crucial tool for good governance. He said today, hundreds of government services are available on mobile phones. The Prime Minister said, the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India.
1: बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: The 57th Goods and Services Tax GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi to discuss policy reforms to resolve disputes and improve the flow of input tax credit with the aim to reduce the time and cost of compliance. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Karnataka CM D.K. Shivakumar, Jammu and Kashmir CM Umar Abdullah, Haryana CM Nayab Singh Saini and finance ministers of states and union territories are also attending the meeting. Sources in the finance ministry said the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema. In a social media post, the Prime Minister said, Nana Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and played characters that will be remembered for generations. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Air Chief Marshal AP Singh today highlighted the Indian Air Force's growing capabilities and stressed that its true strength lies in its air warriors rather than merely in advanced equipment and technology. Addressing on Indian Air Force Day celebrations at Hindon Air Base in Ghaziabad, Air Chief Marshal Singh emphasized the role of air power in protecting national interests and described the Indian Air Force as the custodian of the skies. India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. Puri questioned Pakistan's claim that Azhar is hiding in Afghanistan, noting that the Taliban government has rejected the assertion. He also termed Pakistan's fresh 7 million rupee reward for information on Azhar a gimmick. The Supreme Court today directed the Centre to constitute a three-member committee to examine whether pharmaceutical companies' marketing practices, including gifts and other benefits offered to doctors, require statutory regulation. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the direction while hearing a plea seeking action against unethical interactions between drug companies and doctors. Benchmark domestic equity indices were trading over 1% lower in the afternoon session today. The Sensex declined 883 points to 71,756, while the Nifty lost 308 points to 22,095 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक जारी। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए 5 सूत्रीय सुधार योजना पर हो रही है चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का पैतृक गांव नेमरा में अब से थोड़ी देर बाद होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक। झारखंड में डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। केंद्र सरकार ने राज्य की चयन नियमावली को दी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में दलीलें पेश। और बोकारो के संतोष बोबोंगा का विश्व पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए चयन। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक जारी है। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं, जिसमें छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने के लिए 5 सूत्रीय सुधार योजना का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद उनके पैतृक गांव नीमरा के बरलंगा स्थित घाट पर संताली रीति रिवाज से किया जाएगा। इससे पहले सुबह रांची के मोरहाबादी आवास पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मंत्रियों और विधायकों समेत हजारों शुभचिंतकों ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए रूपी सोरेन द्वारा किए गए कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने वर्ष 1999 के दुमका लोकसभा चुनाव की यादें साझा की।
4: रात में ही जानकारी नहीं होती है इस दुनिया में नहीं रहे। मन को एक प्रकार से व्यथित करता है कि इस शोक की घड़ी में भगवान अब उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यह यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें सेवा और सुशासन की यह सोच धरातल पर दिखाई देती है। यह पहल है खदान मजदूर कल्याण योजना।
5: राज्य के औद्योगिक और खनिज समृद्ध क्षेत्रों में श्रमिक कल्याण तथा माइनिंग सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। राज्य के प्रमुख कोयलांचल क्षेत्र गिरिडीह में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ मजदूरों की सुरक्षा और सामाजिक उत्थान को सर्वोपरि रखा जा रहा है। सरकार के इसी श्रमिक कल्याणकारी विजन को रेखांकित करते हुए आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश।
1: देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया।
5: प्रधानमंत्री के इसी दृष्टिकोण के तहत गिरिडीह में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल प्रबंधन द्वारा न केवल कोयला उत्पादन को नई गति दी जा रही है, बल्कि बीते 10-12 वर्षों में 12 लाख से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का एक राज्य स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए इन दूरगामी कदमों, बढ़ी हुई बीमा सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण की नीतियों की सराहना यहाँ के स्थानीय कर्मचारी और लाभुक भी कर रहे हैं।
6: मैं राजेश यादव, सरकार ने हमारे कर्मियों को, हमारे परिवार को बहुत सारे लाभ दिया है, मेडिकल सुविधा दी है, महिलाओं लोगों को 2 साल का अब मातृत्व अवकाश भी दिए हैं।
7: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं सिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और हम लोग को मैटरनिटी लीव भी 2 साल का छुट्टी दिए हैं। बिना प्रीमियम का ही हम लोग को 1 करोड़ का जीवन बीमा है।
5: राज्य के इस खनन क्षेत्र में आज मजदूरों की सुरक्षा के साथ साथ उनके मेधावी बच्चों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर जो विशेष काम हो रहा है वह पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। कल्याणकारी नीतियों के जरिए श्रमिकों के जीवन में आ रहा यह गुणात्मक बदलाव विकसित झारखंड और विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए ग्रिड से रमेश प्रभाकर के साथ रांची से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
3: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर राज्य की डीजीपी चयन नियमावली को पूरी तरह अवैध बताया है। आरोप है कि झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस मामले में वरिष्ठ IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति से महज एक दिन पहले डीजीपी नियुक्त करने को लेकर अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है। झारखंड हाई कोर्ट में आज JSSC CGL और अन्य नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्रार्थियों और राज्य सरकार की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था।
8: वर्ष 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। नवा स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी के आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना भारतीय आकाशीय सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर रही है। उन्नीस सौ सैंतालीस, 1962, 1962, 1965, 1971 और 1999 का करगिल, ऑपरेशन मेघदूत, कैक्टस, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया ने हर बार भारतीय वायु शक्ति की नई धमक देखी है। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 71,936 पर, जबकि निफ्टी 248 अंक घटकर 22,355 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,43,000 रुपये प्रति किलो है। बोकारो के संतोष बोबंगा ने राष्ट्रीय पुलिस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात संतोष अब 28 मार्च से ऑस्ट्रेलिया में होने वाली विश्व पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
9: ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग कैंपशिप बॉडी बिल्डिंग में दूसरा स्थान हासिल किया हूं। इस उपलब्धि को देखते हुए ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मुझे वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए नामित किया गया है। पुलिस विभाग में ड्यूटी करते हुए अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर लाकर मेडल जीतने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मेरे यहाँ पे जितने भी अफसर है, सहयोगी कर्मी है, सभी का बहुत सपोर्ट रहता है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में GST काउंसिल की 57वीं बैठक जारी। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए 5 सूत्रीय सुधार योजना पर हो रही है चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का पैतृक गांव नेमरा में अब से थोड़ी देर बाद होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक। झारखंड में DGP नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। केंद्र सरकार ने राज्य की चयन नियमावली को दी है चुनौती। जेएसएससी सीजीएल और अन्य नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में दलीलें पेश। और बोकारो के संतोष बोबोंगा का विश्व पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए चयन। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: रंग बिरंगे फूलों पर ओस की बूंदें शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा कर देती हैं। इस मौसम में न बहुत ज्यादा गर्मी और न कपकपाने वाली सर्दी होती है। कांपने वाली सर्दी मन एक अजीब सी शांति और अपनों के बीच आने का एहसास जगाता है। फूलों पर गिरी ओस की बूंदें मानो प्रकृति ने मोतियों के हार से सजाया हो, इसलिए ये नजारा आंखों और दिल दोनों को सुकून देता है। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग सा सुकून होता है। श्रोताओ, वहां के बारे में आप जरूर लिखिए कि वहां की रातें अगर आपने देखी हैं इस गुलाबी ठंड की। वैसे ये तो पूरा शहर, पूरा स्टेट ही कहें तो गुलाबी गुलाबी सा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों में नाना पाटेकर जी का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और उनकी फिल्मों के बारे में लिखा है, क्रांतिवीर, तिरंगा, परिंदा, शक्ति, अग्नि साक्षी जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से जान डाल दी। नाना जी की निर्देशित फिल्म प्रहार मुझे उनकी सबसे प्यारी फिल्म लगती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें सबसे अलग करती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हारूद के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है। ये समय खूबसूरत मौसम सितंबर के अंत तक से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। जी हाँ, और जो अक्टूबर का महीना है श्रोताओ, ये खास कश्मीर जाने के लिए ये मौसम जो होता है, ये समय जो होता है बड़ा ही मुफीद होता है। इस समय अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि चिनार के पत्ते किस तरह से रंग बदलते हैं। और इसी को लेकर हमने इबारत की जो अंतिम लाइन थी वो लिखी थी, क्योंकि लाल सुर्ख रंग सी चादर कहें या ओढ़नी सी कहें कश्मीर में बिछी हुई नजर आती है। एक और श्रोता लिखती है कि कश्मीर में हारूद का अर्थ पतझड़ का मौसम होता है। और कश्मीरी संस्कृति, जीवन शैली और आर्थिकी में इस मौसम का एक बेहद खास स्थान है। इसके साथ ही कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हारूद नाम की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि कल शाम की बारिश है और भोर की बारिश ने हमारे शहर को बेहद खुशनुमा बना दिया है। हवाओं में ठंडक आ गई है और अभी धूप का टुकड़ा हमारे छत और बालकनी पर भी आकर सिमट गया है, जैसे कह रहा हूँ ठंड आया है, मैं तो भी साथ में हूँ। जी हाँ, जहाँ ठंड देर से पड़ी है श्रोता, वहाँ पर तो ये बारिश जो होती है वो बेमौसम आती है, जिससे कि ठंडक को ला सके। फिलहाल गुलाबी ठंड है।

कश्मीर की अगर बात करें तो श्रोताओं, तारीफ कितनी भी करें, शब्द इस प्रदेश के लिए कम ही पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे एसएच बिहारी की रचना, संगीतकार आप अगर बता दें तो क्या बात है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी डॉल्फिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है और इसके बारे में पूछा, क्या सही है, इसको जानने का इंतजार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर साहब चले गए और उन्हें हम याद करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि अपनी दमदार आवाज और अभिनय से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को हम उनके श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की ये इबारत केवल मौसम के बदलाव का वर्णन नहीं करती बल्कि प्रकृति की मानवीय भावनाओं के बीच गहरे रिश्ते का एक सुकुमल दस्तावेज है। गुलाबी ठंड की आहट को हवाओं की सेहरन और फिजाओं की रोमानियत के साथ पिरोना बेहद असरदार है। ये ठंड सिर्फ तापमान का गिरना नहीं बल्कि भावनाओं के जागने का प्रतीक बन जाती है। ये तो बताइए श्रोताओं कि गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, यानी आपको सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल, गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, और दूसरा सवाल एक और है कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल खूब हमारे किस त्योहार में किया जाता है, और एक जगह की तो पगड़ी भी गुलाबी है। तो आप बताएं, ये सारे सवाल आपके लिए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो इस समय शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में अच्छी धूप है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है, फिजाओं में रंग से घुलने को आ गई, वो सुहाना मौसम, सुबह की धूप और घास पर ओस की बूंदे मोती बिखरने लगे, ऐसे में विविध भारती का साथ, वाह क्या बात है। जी हाँ, विविध भारती है हमेशा से आपकी साथी। तो ये गीत आप सुनिए और जो हमने सवाल आपसे पूछा वो भी बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ रहे हैं श्रोताओं, उनको अगर आप बता सकें उनके बारे में तो क्या ही बात है।

नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया द ट्रेन फिल्म का गीत आपने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने तमाम अपनी बातें हमसे साझा की हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी सुबह सुबह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रात से ही ओस गिरना शुरू हो जाती है, सुबह तो ठंड लगती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इस समय कश्मीर में फसलों और खासकर केसर की कटाई का मौसम ये माना जाता है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और एक हमारे श्रोता नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखते हैं कि इनकी फिल्म नट सम्राट देखी है, क्या भूमिका थी उस फिल्म में इनकी, और अभी तक वो आखिरी दृश्य याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर जी को याद किया है। वहीं हमारी एक श्रोता लिखती हैं कुछ गीतों के बारे में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कहां सिलाई हो जाने मन के ताबी चेहरा, और तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है, लिखा है इसके बारे में। एक और श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम की गुलाबी ठंड की हवाएं और चांदनी रातें अक्सर दिल में खास यादों का चिराग जला जाती हैं। इस खूबसूरत माहौल में किसी को याद करना और खो जाना स्वाभाविक। हवाओं में घुली है ये गुलाबी सी ठंड, चांदनी रात में बहकी है ये वादियां मलंग, ऐसे में दिल को कोई याद ना आए तो कैसे हो सकता है। और भी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैं छत पर जाती हूं तो एक दो दिन से हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है मौसम करवटें ले रहा है और जो त्यौहार हैं वो भी आने वाले हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और जी हाँ, नाना पाटेकर की यादें तो कुछ ऐसी ही हैं। श्रोताओं, आज की इबारत जो गुलाबी ठंड को लिए हुए है इसी बाबत हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जयपुर है वो तो पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम आता है रात 8 बजे, इस इमारत की गुलाबी रंग को लिए क्या खासियत है ये आप हमें बताएं, और हम किस इमारत की बात कर रहे हैं।

राजश्री और शमी कपूर पर फिल्माया गया फिल्म जानवर का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, अब कुछ सवाल जो हमने आपसे पूछे थे कि गुलाबी रंग किन रंगों को मिलाकर बनता है, ये आपने अभी तक नहीं भेजा है, तो आप इसे ज़रूर भेजें। और एक तितली होती है श्रोताओं जिसके गुलाबी पंख होते हैं, ये कौन सी तितली है? मतलब दो तीन सवाल की बौछार आप पर कर दी जाए मुझे ऐसा लगता है। और गुलाबी जो चूड़ियाँ हैं उनका बाजार भारत में कहाँ है? एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक सुंदर सा गुलाबी फूलों का पेड़ होता है, इस पेड़ को यानी इस फूल को क्या कहते हैं? तो अब बढ़ते हैं उन श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हर बदलता मौसम अपने साथ एक नई आभा लेकर आता है और प्रत्येक जाने वाला मौसम अपनी नियति जानता है। जाने वाला मौसम विदा लेते समय कुछ मुरझाया सा, कुछ अलसाया सा लगता है, इसलिए गुलाबी ठंड लिए इस मौसम में मन में अलग ही उत्साह को सुरूर रहता है। बदलते मौसम के मन पर कोई व्याख्या नहीं लिखी जा सकती, जो सामने है उसका स्वागत करके ही जीवन को चलाने का हुनर सीखना होगा। गुलाबी ठंड अपने साथ ढेर सारे उत्सव लेकर भी आती है और ये सच है कि ये प्रकृति ईश्वर की सुंदरता का वहन करती है। हर बदलता मौसम इसकी पहचान है। तो ठंड जो है उसकी तो शुरुआती दौर है और आपने इसकी बहुत सारी तैयारियां भी की होंगी, तो क्या खास आप ध्यान दे रहे हैं ये भी आप हमसे बता सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं, ठंड, रोशन नजर, पर्दा, गुलाबी, कश्मीर और सपनों जैसे ये शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं चला मौसम में कब गुलाबी सर्दी ने अपना शबाब घोल दिया। सुबह योगा में जाती हूँ तो पार्क में हरी घास पे छोटी छोटी शबनम की बूंदें किसी चमकीले मोती सी लगती हैं। हल्की सी सिहरन, उड़ते हुए पंछी, नीला आकाश, सब कुछ जैसे मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो क्या इन ओस की बूंदों को कभी आपने छुआ है? तो आप जरूर बताएं। वैसे हमारे आज के जो गीत हैं श्रोताओ, उनमें भी आपने देखा होगा कि गुलाबी रंग छाया हुआ है, जैसे इस गीत में।

देव मुखर्जी और तनुजा पर फिल्माया गया एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने इस गीत की बातें भी बिल्कुल ठीक लिखी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप जयपुर की जिस इमारत की बात कर रही हैं जो विविध भारती पर रात 8 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका नाम हवा महल है। जी हाँ, और ये इमारत जो है वो गुलाबी पत्थरों की सुंदर सी जो एक तामीर है देखते ही बनती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है और फिजाओं में कुछ रंग का एहसास होता है, घास पर भी ओस की बूंदे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग को आपस में मिलाने से बनता है, क्या ही बात है। एक और श्रोता लिखती है कि बेमिसाल अभिनेता नाना पाटेकर का जाना आंखों को नम कर गया है, ईश्वर महान अभिनेता को अपनी शरण में ले, दिल से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र नमन। एक और श्रोता लिखते हैं कि इसी रंग के बारे में, गुलाबी रंग में, लेकिन तितली का जो पंख पिंक होता है यानी गुलाबी होता है उस बारे में आपने लिखा नहीं और हमने आपसे पूछा था कि गुलाबी चूड़ियों का सबसे बड़ा बाज

और अलग अलग जगहों पर सैर के लिए जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मौसम बड़ा ही खुशगवार होता है। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है तो वो कौन सा शहर है जहाँ आप जाना चाहते हैं या जहाँ जा रहे हैं? एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी जो है वो ठंड शुरू हो गई है, और इस तरह से कई हमारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो तेज धूप निकली है लेकिन रात को ठंड हो जाती है। कलाकार और फिल्म आपको पहचाननी है।

बड़ा ही खूबसूरत था लंदन पैलेस का ये सीन। श्रोताओं, नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, माला सिन्हा और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था, आनंद बख्शी की रचना थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब गार्डन में पैरों पर छोटी छोटी बूंद बिखरी रहती है, यानी ओस की बूंदों की ये बात कर रही हैं, तो उनको छूकर आंखों से लगाने में बहुत सुखद एहसास होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ओस की बूंदें जो हैं उन पर चलते हैं या फिर उन्हें आंखों में लगाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे ठंडियों की सुबह सवेरे 5 बजे जो गुलाबी ठंड पड़ती है मेरे मन को बहुत लुभाती है, मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। सुबह सुबह ठंड में टहलने टहलना बहुत पसंद है जब हल्की हल्की ठंड होती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं हाल ही में राजस्थान के एक साल में पयाना बंसी पहाड़ पोज हिंटोन सिटी रहकर मंदिर के लिए पिंक पत्थरों को नक्काशी बनवा कर ही आया हूँ, तो शायद इन्होंने इस पर काम भी किया हुआ है, तो उस बारे में ये लिखते हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं श्रोताओं जो राजस्थान की वादियों में रहते हैं और जो गुलाबी बलुआ पत्थर होते हैं उनके काम, यानी ऐतिहासिक इमारतें खूबसूरत जगहों का निर्माण करते हैं आज भी, तो ऐसे हमारे कोई श्रोता हैं तो अपनी बातें वो भी

लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गुलाबी और पीला रंग अक्सर पूजा पाठ और शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने गुलाबी रंग की बात करी थी श्रोताओं, होली में बड़ा इस्तेमाल होता है ये रंग, इसका जवाब ये था। और होली में तो बहुत सारे रंग इस्तेमाल होते हैं लेकिन गुलाबी रंग खास नजर आता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जी हाँ, मैंने राजस्थान की गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड में बहुत भ्रमण किया है। राजस्थान का ही वाशिंदा हूँ, बेशक दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के गुलाबी किले भी देखने लायक, विशेषकर अक्टूबर से फरवरी तक। और अब आपको ये कलाकार पहचानने हैं।

एक पक्षी है श्रोताओ जो गुलाबी रंग के लिए मशहूर है, फ्लेमिंगो इसका नाम है। और हमने आपसे पूछा था कि जो राजस्थान है उसमें गुलाबी जो इमारतें हैं उनकी खासियत क्या है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि गुलाबी रंग के पत्थर से ये बनी होती हैं। और एक सवाल हमने आपसे अभी भी पूछा है जो आपको बताना है, और एक पेड़ है जिसमें गुलंग के फूल जो है वो खूबसूरती से खिले होते हैं, चेरी ब्लॉसम ये है। और अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अब जो ठंड का मौसम है इसमें बड़ा ही प्यारा सा एक अलग शबाब लिए हुए अमरूद आता है जो गुलाबी रंग की भी अहमियत को लिए हुए होता है, और ये कहाँ का है, किस बाग का है, अगर आप जानते हैं तो जरूर बताएं।

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई
1: एक फूल दो माली। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे साधना और संजय खान पर फिल्माया गया। इसके पहले शिकारी का गीत हमने आपको सुनवाया, अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया वो गीत था। श्रोताओं, एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि बेईमान ही होता है, मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंतजार भी बना रहता है। हमको प्रकृति को प्यार करने वाले को मौसम का रूठना फिर वापस आना ये भी जीवन की एक प्रक्रिया होती है। अब आप एक सवाल और बता दें। एक तो हमने आपसे एक फल का सवाल पूछा है कि हरे और गुलाबी रंग का ये जो फल होता है, यानी अमरूद भी शायद हमने आपको बताया है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। और एक गुलाबी रंग की झील है, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो जरूर लिखें। ये कौन से शहर की शूटिंग है श्रोताओं?

आराधना फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। जिस झील को हमने पूछा है श्रोताओं, ये लेक हेलर झील है ऑस्ट्रेलिया की, जो गुलाबी रंग की है, और ये अमरूद प्रयागराज यानी इलाहाबाद के खुसरो पार्क में पाया जाता है।

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के संग।

0: 60 million broadband customers. We today in India have over 1.1 billion broadband customers, 1.35 billion mobile customers. IMC 2018 talked about connecting, creating, and innovating. And the Prime Minister has always insisted that technology must permeate not only the last village, but reach every single citizen.
1: The 57th GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. The GST Council meeting is deliberating on policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the redevelopment of the historic Jallianwala Bagh Smarak.
2: As we take the name of Jallianwala Bagh, the painful and horrific memories of the brutality by British government comes back. It was here in Amritsar on the Baisakhi day in 1919 when troops led by Brigadier General Reginald Dyer killed hundreds of innocent people. They were assembled here to peacefully protest against the Rowlatt Act. Jallianwala Bagh Smarak, which was then constructed in the memory of those martyred, was renovated after decades and dedicated to the nation by Prime Minister Narendra Modi on 28 August 2021. Multiple development initiatives were undertaken at the complex. Elaborate heritage restoration works carried out in sync with the local architectural style of Punjab. Four museum galleries were created showcasing the historical value of events that unfolded in Punjab during that period. A sound and light show started to display the events that happened on that day. Visitors to the Bagh from various parts of the country when contacted appreciated the redevelopment.
3: था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है. गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था. गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा.
2: जलियांवाला बाग स्मारक विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर इयर्स टू कम एज एन एपिटोम ऑफ सैक्रिफाइसेस मेड बाय इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. राजेश बाली, आकाशवाणी न्यूज, Jalandhar.
1: This is Akashvani giving you the news.
4: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
1: Welcome back to the Midday News. The Supreme Court today directed the Centre to constitute a three-member committee to examine whether pharmaceutical companies' marketing practices, including gifts and other benefits offered to doctors, require statutory regulation. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the direction while hearing a plea seeking action against unethical interactions between drug companies and doctors. The Centre has been asked to file an affidavit on compliance with the matter listed for further hearing on January the 29th. A case study on the evolution of water governance in Gujarat and India was launched at IIM Bengaluru yesterday in the presence of Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation under Ministry of Jal Shakti, Ashok Kumar Meena. Taking a page from the case study, the Jal Shakti Secretary Meena spoke on how people's mission, backed by strong institutions, steady investment and Gram Panchayat ownership, can quicken transformation. Addressing media, former secretary in the Department of Drinking Water and Sanitation, Parameshwaran Iyer, spoke of key learning from the case study, including political leadership, public participation, and role of panchayat as envisioned by Prime Minister Narendra Modi.
5: You know, unless you have community management or people's participation or a Jan Andolan, and you devolve management to the lowest appropriate level, the panchayats, and get real ownership, it's very difficult to sustain these programs. And lastly, go big. And I think that's the hallmark of Chief Minister, Prime Minister's water management and water governance. Everything is at scale. It was done in Gujarat and is done nationally.
1: The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Air Chief Marshal A.P. Singh highlighted the Indian Air Force's growing capabilities and stressed that its true strength lies in its air warriors rather than advanced equipment and technology. Addressing on Indian Air Force Day celebrations at Hindon Air Base in Ghaziabad, Air Chief Marshal Singh emphasized the role of air power in protecting national interests and described the Indian Air Force as the custodian of the skies.
6: The Indian Air Force, being the custodian of the air power, understands its role and responsibilities and is always alert, committed and ready to meet any contingency. We believe that any Air Force can have the most advanced aircraft in the world or most advanced systems in the world, but its true strength is measured by its operational preparedness. That is how quickly and confidently it can act whenever the call comes.
1: The Air Chief Marshal also recalled the IAF's combat operations during Operation Sindoor, saying the country saw firsthand the destructive power as well as the effective air defense operations of the Air Force during the operation. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Modi has said actor Nana Patekar was an outstanding artist who won the hearts of audiences through various roles. Addressing an event in New Delhi today, Mr. Modi said Nana Patekar's life was dedicated to the honour, dignity and pride of the tricolour. Mr. Modi highlighted that through his films, he strongly criticised the prevailing social system and worked against social evils. The Prime Minister said Nana Patekar was a strong advocate of taking firm action against anti-national elements.
7: Mashhoor abhineta Nana Patekar ji अब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया।
1: We bring you more from our correspondent.
8: Vishwanath Patekar, popularly known as Nana Patekar, was born on January 1, 1951 in Murud, Zanjira in Maharashtra. Nana was known for his intense performances, distinctive dialogue delivery and portrayal of complex characters.
9: Kalam wali bhai kranti lana chahti thi. Kalam ke zor par kale vartaman ko khatam karna chahti thi. Kaun samjha uski baat ko? Kise jagati wo? Main jaag gaya.
8: A recipient of 3 National Film Awards, he was acclaimed for films including Parinda, Krantiveer, Agni Sakshi, Natasamrat, Ab Tak Chappan and Yashwant. He made his Bollywood debut with Gaman in 1978 and went on to deliver notable performances in Shakti, The Power, Abharan, Taxi Number 9211 and Rajneeti. He gained widespread popularity as gangster Uday Shetty in Welcome and reprised the role in Welcome Back. He remained active in cinema until his final years, appearing in Houseful 5, O Romeo and Subedar, which was released recently. Prajna, Akashwani News, Mumbai.
1: India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honours sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
10: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
7: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
7: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम हैं, उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
10: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
0: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
10: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेता निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है।

0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
4: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
5: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
6: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है यहाँ पे। इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
7: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने मुझे ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
4: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
8: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
9: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
10: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
9: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समारोह समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंचे। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया।

करने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में।

0: रवि की तर्ज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नव में।

फिल्म जानवर का दो गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवाते हैं वो कौन थी इस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में। राजा मेहदी अली खां के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। और यही है श्रोताओं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। केंद्र सरकार की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी के तहत जोश जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ टीम का शुभारंभ भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित बीएन जालान कॉलेज के सभागार में जिला प्रशासन माय भारत के वॉलंटियर्स तथा एनसीसी कैडेट्स के छात्रों ने देखा। मौके पर 14 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान से आज युवाओं को जोड़ा गया है, उसे आने वाले समय में भारत को जल्दी ही टीबी मुक्त कर लिया जाएगा।
1: हम लोग के टीबी पेशेंट पे काफी काम हो रहा है, अलग अलग किट्स भी हम लोग देते हैं, उनको हम लोग रेगुलर अपडेट भी रखते हैं कितने लोग हैं हमारे। बट एक टीबी को टीबी मुक्त भारत की ओर करने के लिए कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे एनसीसी वॉलंटियर्स हैं, कुछ माई हुआ के सब लोग समाज से लोग मिलके टीबी को मुक्त करने के लिए कार्यक्रम था जो उसका शुभारंभ किया गया और हम लोग उम्मीद करते कुछ आगे महीने और साल में भारत को टीबी मुक्त कर ले।
0: पलामू में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जोश टीम की शुरुआत आईएमए हॉल में की गई। पलामू के उप विकास आयुक्त सदात अनवर ने टीम का शुभारंभ किया। इस टीम का मकसद गांव और पंचायत तक टीबी बीमारी के प्रति जागरूकता पहुंचाना है। टीम के सदस्य लोगों को टीबी के लक्षणों, समय पर जांच और नियमित इलाज के लिए जागरूक करेंगे। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि स्मार्ट मीटर केवल तकनीक लागू करने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इन्हें उपभोक्ताओं और बिजली वितरण कंपनियों के बीच उपयोगी संपर्क का माध्यम बनाना होगा। मंत्रालय में वितरण विभाग के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा ने आज नई दिल्ली में मीटरिंग इंडिया 2026 में कहा कि भारत के बिजली क्षेत्र के डिजिटलीकरण में स्मार्ट मीटरिंग एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद उनके पैतृक गांव नेमरा के बरलंगा स्थित घाट पर संथाली रीति रिवाज से किया जाएगा। इससे पहले सुबह रांची के मोराबादी आवास पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मंत्रियों और विधायकों समेत हजारों शुभचिंतकों ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज जेएसएससी सीजीएल और अन्य नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन

0: दिया था। हजारीबाग के चौपारण में त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। सहायक आयुक्त उत्पाद के पर्यवेक्षण में झारखंड बिहार सीमा पर हजारीबाग और बिहार के गयाजी उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 8 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके से करीब 470 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।
1: छोटे व्यापार को रोकने के लिए अभी दो टीम बनाई गई है, दोनों सभी सेक्टर के आधार पर एक सुबह और एक शाम रेड करेगी। जगह जो चौपारण में है स्थित है, वहाँ पर भारी मात्रा में 6 से अधिक को ध्वस्त किया गया है तथा जो कुछ अपराधी तत्व थे वो फरार हो गए हैं। छापेमारी दल को देखते हुए जिसमें 1800 लीटर शराब डिस्ट्रॉय किया गया है और 28,000 किलो जैसे जावा महुआ बर्बाद किया गया है।
0: देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
2: मुझे तो लोरी याद आ जाएगी। हाँ। क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरिया, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरिया।
2: हाँ।
1: अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का, संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही हैं लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
2: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता, तो कहां से लोरी गाएंगी। तो वो ऐसे करती है कि मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती है, तो बच्चे उसी से आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
1: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। मोबाइल और ये सब
2: भूल जाते हैं,
1: नहीं याद रहता है
2: जी।
1: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का। और आंखें, कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
2: जी।
1: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है, तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
2: जी
1: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात करें विश्व दृष्टि दिवस की
2: जी।
1: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें, और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें।
2: नेत्रदान जी। और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है, इसके अंतर्गत बेटे बेटी में भेदभाव, जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है, कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
1: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से ये मैनेज करती है, वो लिखें। और इसके अलावा
2: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम महत्व के बारे में जानकारी देंगे।
1: और सुना लीजिए, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
2: जी।
1: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है बड़े दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उगलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आता था। तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
2: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी ममता जी। हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
1: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है, और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला, और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले, तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे, और इतनी सहजता से, इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूं, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है, और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई। तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है, जो कठिन परिस्थिति में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है, और 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना, सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए, साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए,
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती है, लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना लें।
1: नहीं तो ऐसा होता ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डाले। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल ये जांच करवाने चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखें, एक आंखों से आंखों में बातें होती हैं। और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने और लता मंगेशकर की आवाज फिल्म चिराग। सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूं कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं विनम्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं हैं, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने है।
0: जी,
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समाज सुधारक की
0: जी,
1: जिनका नाम छुटनी महतो है
0: जी,
1: और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन, भूत, पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, जिस तरह की बातें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको, इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई
0: जी। और ममता जी, कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छुटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
1: और सोनाली जी, यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम
0: उतारा जाता है जी।
1: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए
0: जी,
1: न कि भूत पिशाच के जरिए।
0: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोला डीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
1: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गाँव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा सामना करना पड़ा तो, और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
0: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
1: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की, बल्कि गाँव गाँव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को यह भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
0: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही, जहाँ ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
1: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
0: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया
1: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने मशाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
0: जी।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
2: ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई। ना ना, अब तो रिटायर हुई, ऑफिस की भी बंदिश ने खुरपी कैची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई। गाना चल रहा है, तेरी आंखों की सिवा दुनिया में क्या रखा है।
0: क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, दिन में सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
2: जी।
0: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुल्तवी की कर सकती हैं
2: जी। एक हमारे साथी ने नेत्रदान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षुदान की बात निकली है, तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
0: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
2: पीछे छूटते जा रहे हैं ना ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुलाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारी लोक संस्कृति के ऐसे धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता।
0: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीख कर हम पता चला कि मोबाइल में ढूंढ रहे हैं गाना और लोरी, फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
2: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
0: अब तो बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है, गाने के गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो लिरिक्स, हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं, हम मतलब आप मतलब हम सभी। आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा। और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके कि अपने बच्चे का नाम
2: उसने कि उसके नाम जोड़े जाते थे,
0: कहाँ किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसे में, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति, चांद, सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी, उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
2: छिपी हुई प्रतिभा है जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे, विवाह गीत, शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
0: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
2: बट ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
0: हाँ ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लेंगे और पारंपरिक गीत और इसी पर एक सखी सहेली हम करेंगे। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
2: पसंद आएगा या नहीं।
0: जी
2: और है ना ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
0: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी और कोई जो पटना बोलते पटोहा
2: जी,
0: तो उसको झूले को झुलाते थे और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में।
2: जी और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार के सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
0: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
2: बिल्कुल याद है।
0: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
2: और तो अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
0: बिल्कुल अच्छा होगा, ये रहा। भाई हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ में गुनगुना सकते हैं।

0: भाई देखिए सोनाली जी, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है, तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। और जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई न कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती हैं। और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती है, मजबूरी है और करना भी चाहिए, तो लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए।
1: हाँ।
0: दादा दादी है,
1: भाई सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: हाँ।
0: जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी को, नानी को बहुत सारी लोरियां याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी सुना सकते हैं।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आ रे आओ। एक सखी ने लिखकर भेजी।
0: और जब घुटुक, जिसमें दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेकर, तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक
1: अभी दूध पिलाएंगे,
0: घुटुक नहीं बोलो, बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, तो शादी ब्याह, नामकरण, कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। भाई अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म की मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआं पूजन,
0: हाँ, फिर वो मिट्टी की मिट्टी होती है तो मिट्टी पूजन करती हैं, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकहुली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती हैं तब, सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी

0: को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: जी। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि

0: सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय है और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लय और उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है। समय मिलने पर ही मैं अपने शिशु से बातें करती थी। सुलाते समय लोरियां तो जरूर, स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है। रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है। इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो वो भी उसमें तो शामिल होंगे उसमें।
0: बिल्कुल वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहाँ जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहाँ पर बताएंगे आपको। इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुलाने और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ, दादी माँ, बुआ नानी, मौसी की गोद में खेलते हुए इस लोरी को नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होगा।
0: तो चलिए फिर ये लोरी एक बार फिर से सुनते हैं।

0: इसके लोरी के लिए
1: जी
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: तो अगली बार ढोलक लेके
1: ढोलक लेके बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा बबुआ के मुहा में घुटुक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती हैं और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी। भाईलो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी, ये लोरी सुनाती।
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो तो आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टिप्पणियां आ रही हैं
1: जी
0: उसे पढ़ दिया
1: अब जाए। जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: गाया जाता है तो वे बेटी के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो तीन बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन एजुकेशन साफ सफाई अच्छा पहनना ओढ़ा सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कत्थक डांस स्कूल भी चला रही है और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, क्या बात है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
1: एक हमारे साथी ने कहा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती है, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार, फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों, शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है, अब कोशिश है कुछ दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं, अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वह एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है,
1: क्या बात है। एक सखी ने लिखा है मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। कितनी अच्छी उदाहरण है।
0: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं, फिर खुद से पूछती हूँ जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों।
1: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटी में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आज आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता। जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें

ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं।

0: तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही हैं, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया है, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से इस चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
1: और अब गीत सुन ले,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना है?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन है। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए CR पाटिल ने कहा कि नदी पुनर्जीवन के लिए प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर जल उपलब्धता, पारिस्थितिक स्वास्थ्य, भूजल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और सामुदायिक भागीदारी को समाहित करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों को वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11/2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। पारादीप तट पर सारिक्स 26 समुद्री खोज और बचाव अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक PTM, तटरक्षक पदक TM से सम्मानित भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने आज पारादीप तट पर 12वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान सारिक्स 26 का अवलोकन किया। हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं से अपनी पहचान बनाई। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रीको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला और थरू मानेपल्ली को पुरुष सिंगल्स में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम दीदी।
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता हो, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमारे पास वो जरूर आते हैं दीदी।
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: ये देखो बड़ा हो ये छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं, ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के, वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं,
0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा। अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता
1: नहीं
0: पाते हैं?
1: मैम जी, हम अकेली हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने
1: और
0: स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: वह बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो
1: हाँ
0: बताइए
1: जी,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर। गाने के बोल हैं, तेरी याद आती है मैम जी, तो लाइने हैं, बोल दे इजाजत हो आपकी।
0: सुनाइए।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जिंदा श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का खेड़गांव है।
0: क्या नाम है?
1: खंडा गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गाँव, इसमें खंडगांव गाँव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: अच्छी, सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते हैं। कोई वाद नहीं, डंटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी इलेक्शन में हो या कौन सा ही कारण हो, एक भीड़ में न होगा कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंडा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फंड करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में, हर टांडा बस्ती वाले में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही, सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसके लिए जो महिला का तो तुम्हारा सखी से नहीं ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना? बहुत अच्छा,
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की। हर कहाँ से फोन लगा, कुछ मैडम ने हमारे जो बहन रहते धन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना?
1: वो भारत का

0: सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो युद्ध भारती देश में कहाँ भी जाओ।
1: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
0: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई।
1: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम चिड़ावत कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए।
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन।

0: की कटाई हो गई है, हम अब गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करेंगे।
1: अच्छा, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करने वाले हैं, तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है? जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
0: दीदी, इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोटा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
1: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
0: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल को अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
1: अच्छा,
0: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
1: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
0: नहीं, नहीं, नहीं।
1: हाँ, चलिए गाना बताइए, कौन सा सुनेंगे?
0: बटवारा फिल्म का है दीदी, सारे वास्ते रे ढोला नैन मेरे जागे,
1: जागे रे जागे। अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए, आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी। आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: जम्मू कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए।
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है। दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: और होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी बाकी काम कर लेता है ना, जैसे अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं, ऐसा
0: हाँ,
1: ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट
1: हाँ,
0: की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना, अखरोट उठाते हैं, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं
0: अरे
1: पत्थर पे। हाँ,
0: अच्छा, कितने अखरोट
1: पत्थर
0: को
1: पे
0: तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो हाथ
1: हाँ
0: से करते हैं?
1: हाँ हाँ हाथ ये वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, ये छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दब मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: हाँ जी,
0: महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: हाँ, बहुत मुश्किल मेहनत तो अब यही है, रोजगार
0: बिल्कुल, फिर
1: मेहनत
0: भी
1: करनी पड़ती है।
0: आप में समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ, सही बात सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ, सारे
0: बताइए।
1: प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम आते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं, आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिंदल बोल रहा हूँ मैं।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: भाई टू व्हीलर गाड़ी जो है
0: हाँ?
1: सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं मैम, और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका, या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे, जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, तो वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात
0: हाँ,
1: के दिनों में।
0: हाँ,
1: तो जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, उसमें गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है ना, जरा के ऊपर है, जरा जितने आए जितने। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऑटो के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं? या
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है आराम से। उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: उदयपुर में फिल्माया गया गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: मेरे संग संग आया यादों का मेला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था?
1: उदयपुर राजस्थान, किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कह रही हूँ।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना ब्रस्ट तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था, बेचारा अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतनी सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते
0: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूँ मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूँ, लाइव फोनिंग करके मैं जुड़ता हूँ, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूँ, ईमेल में जुड़ता हूँ, बड़ा मोबाइल में बात करता हूँ, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूँ, सभी केंद्र का सुनते रहता हूँ। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काइले नगर से बात कर रहा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मैं को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माताजी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती, तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं बोले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा वीट भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे ला 50 साल से, बचपन से स्कूल में चौथी में से था जब तक तो आज तक लेके हम विविध भारती बचपन से सुन के बड़े होते आए ले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते है एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैम। सबसे पहले तो दीदी मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बताइए क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये शिरकत की थी?
1: जी, सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ। दीदी मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा ही रहेगा दीदी।
0: हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं संदेश हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
1: जी दीदी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
0: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 0222867028, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन. छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में.

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है तब।
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

0: मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो

0: रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। स्वागत है आपका सायंकालीन सभा में।

आइए सर्वप्रथम आज अपनी सभा से प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 6 बजे युवा दोस्तों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा युवाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत वायुसेना दिवस एवं विश्व डाक दिवस की चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इंटरनेट विशेषताएं और इसका लाभ विषय पर रत्नेश कुमार द्विवेदी की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 बजे कृषक भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी। कार्यक्रम में समसामयिक विषय पर चर्चा होगी। इसके साथ ही नवजात बछड़ों की देखभाल विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा ली गई भेंट वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे शाम 7:15 बजे से। साप्ताहिक कार्यक्रम उजाले की ओर 7:45 बजे, जिसके अंतर्गत आप रविंद्र पांडे की वार्ता सुन सकेंगे। विषय होगा शिक्षा और रोजगार के बीच समन्वय हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हमारा होगा चित्रपट से शाम 8 बजे से। क्षेत्रीय फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सरहदें आप सुनेंगे 8:30 बजे से। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 10:30 पर कार्यक्रम एक रंग के अंतर्गत आप सुन सकेंगे एक ही फिल्म के कुछ नगमे। ये थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की।

अब आइए अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 6 बजे मुख्य प्रादेशिक समाचार, 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से, 9:15 हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:10 पर उर्दू में समाचार, 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और रोजाना की तरह विविध भारती की सेवा हम आपको पुनः देंगे रात्रि 9:30 से। इस प्रकार हम अपनी सभा की समाप्ति करेंगे रात्रि के 11:10 पर। यह थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

आज की शाम तमाम श्रोता मित्रों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम युवावाणी में। श्रोता मित्रों, हम बताते चले, महान फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर युवाओं और पूरे देश के लिए एक बेहद सशक्त, बेबाक और प्रेरणादायक अभिनेता थे। युवाओं के बीच उनकी छवि एक ऐसे कलाकार की थी जो पर्दे पर व्यवस्था, अन्याय और संघर्ष के खिलाफ एक आवाज़ के रूप में थी। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में अब बातें भारतीय वायुसेना की। जी हाँ, भारतीय वायुसेना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को भारतीय वायुसेना के गठन, उसकी वीरता, साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति योगदान के बारे में जागरूक करना है। जी हाँ, यह दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वायु सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण, त्याग और तकनीकी कौशल को याद किया जाता है आज के दिन और सम्मानित किया जाता है। देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना आज का इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। युवा दोस्तों, युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप में राहत एवं बचाव कार्य और अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में वायुसेना की भूमिका को रेखांकित किया जाता है। जी हाँ, आज भारतीय वायुसेना दिवस है जिसे हम सब मना रहे हैं, और हम आपको बताते चले कि प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को हम डाक दिवस भी मनाते हैं। विश्व डाक दिवस की शुरुआत 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड के बर्न में सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को व्यवसायों के दैनिक जीवन में डाक सेवाओं की भूमिका और वैश्विक सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण, बेहतर सेवा वितरण और विभिन्न देशों के डाकघरों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल युवा बंधु, बातें और भी होती रहेंगी। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लोग इसका प्रयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए आवश्यक बन चुका है। इंटरनेट ने आज बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमें हर काम बहुत आसान लगता है। 100 साल पहले किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इंसान किसी ऐसी चीज़ की रचना कर देगा जिससे दुनिया की तमाम सारी जानकारी एक ही स्थान पर बहुत ही आसानी से मिल पाएगी और दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े होंगे। इंटरनेट हमारे आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय में इंटरनेट दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेटवर्क बन चुका है। इंटरनेट को आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का आविष्कार भी माना जाता है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े जा रहे हैं। इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने एवं प्राप्त करने की अद्भुत सुविधा देता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम कुछ सेकंडों में ही बड़े या छोटे संदेशों अथवा किसी प्रकार की जानकारी एक कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस जैसे टैबलेट, मोबाइल, पीसी से दूसरे डिवाइस में आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आम जन का जीवन भी काफ़ी आसान हो गया है। अब इंटरनेट मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इंटरनेट आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला विश्व का पहला ढाल शक्तिशाली और सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे संक्षिप्त में नेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल है और VAN प्रणालियों तथा टेलीफोनों के जरिए संपूर्ण विश्व के करोड़ों कंप्यूटर्स एवं उप नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधनों को साझा करने अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP के द्वारा दो अथवा कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर अतः संबंध स्थापित करके इस प्रक्रिया को इंटरनेट कहते हैं तथा इनके बीच की साझा करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। पहले के समय में जब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो उन्हें कई प्रकार के सामान्य कार्यों के लिए भी कई घंटों तक लाइनों में लगे रहना पड़ता था, जैसे रेलवे का टिकट लेने, बिजली बिल जमा करने तथा आवेदन पत्र जमा करने जैसे कार्यों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आधुनिक समय में लोग बस एक क्लिक से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं तथा इसकी एक और सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में भी रख सकते हैं। इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रमुख साधन है। इसके द्वारा लोग अपने घर बैठे सारे क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब ऐसी धारणाएं दी जा रही हैं कि इंटरनेट के बिना मानव जीवन अधूरा सा है। इंटरनेट अपने आप में कोई आविष्कार नहीं है, यह टेलीफोन, कंप्यूटर व दूसरी तकनीक को इस्तेमाल करके बनाया गया एक ऐसा जाल है जिसमें सूचना व तकनीक का साझा उपयोग किया गया है। इंटरनेट का आविष्कार 1969 ईस्वी में टिम बर्न्स ली ने किया था। इसे सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग द्वारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के गुप्त आंकड़ों और सूचनाओं को दूर दराज के विभिन्न राज्यों तक भेजने व प्राप्त करने में लाया गया था। हमारे भारत में इंटरनेट 1980 के माध्यम के दशक में आया था। इंटरनेट के सुगम इस्तेमाल को एप्पल नाम की कंपनी ने सन 1984 में कंप्यूटर में फाइल फोल्डर और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया, जिसके कारण आज इंटरनेट चलाना बहुत आसान हो गया है। अगर एप्पल कंपनी नहीं होती तो आज हमें कोडिंग करके ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता। भारत में इंटरनेट का सबसे पहला इस्तेमाल 15 अगस्त साल 1995 में किया गया था। इंटरनेट का पुराना नाम आर्पानेट है। 1960 से लेकर 1983 तक इंटरनेट को द आर्पानेट नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि उस समय पूरा इंटरनेट को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। द आर्पानेट अमेरिका की एक ऐसी संस्था थी, इसलिए उस समय इंटरनेट का नाम आर्पानेट रखा गया था। इंटरनेट के आविष्कार का मुख्य श्रेय अमेरिका और रूस को जाता है। इन दोनों देशों ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से इंटरनेट के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। आज अमेरिका और रूस के वजह से ही विश्व के सारे लोग इंटरनेट का लाभ ले पा रहे हैं। इन देशों के कारण ही इंटरनेट का विकास संभव हो पाया है। इंटरनेट को देखने और उससे सूचना एकत्रित करने के
कार्य को सर्फिंग कहते हैं। वैसे तो सर्फिंग करने का तरीका कठिन नहीं है, परंतु सूचनाएं इंटरनेट पर प्रविष्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर और बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना काफ़ी कठिन कार्य है। इंटरनेट की अपनी एक दुनिया है और इस दुनिया में से संबद्धता करने के लिए 3 स्तर होते हैं।

0: प्रथम स्तर पर उपभोक्ता केवल इंटरनेट पर सूचनाएं या जानकारी देख सकता है, द्वितीय स्तर पर उपभोक्ता केवल इंटरनेट का एक आंशिक भाग बन जाता है और सूचनाएं एकत्रित करने के लिए के अलावा वह वेबसाइट भी बना सकता है, तृतीय स्तर पर उपभोक्ता स्वयं इंटरनेट प्रणाली का मुख्य हिस्सा बन जाता है, यहीं से उपभोक्ता इंटरनेट का संचालन शुरू कर देता है, धीरे धीरे उन वेबसाइटों पर उपभोक्ता अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से इंटरनेट और उपभोक्ता में आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है। आज के वर्तमान समय में इंटरनेट का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट का उपयोग आज के दौर में लगभग कार्यों में किया जाने लगा है। आज इंटरनेट से आंकड़ा संग्रहण, टिकट बुकिंग इत्यादि कार्य किया जा रहा है। इंटरनेट का महत्व आज इसी बात से समझा जा सकता है कि इंटरनेट के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज इंटरनेट के बिना मानव का जीवन अधूरा सा लगता है। इंटरनेट का महत्व कुछ इस प्रकार प्रकाशित किया जा रहा है, जैसे मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, NGO, विश्वविद्यालय, कार्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी में हर डाटा को कंप्यूटरीकृत करके बड़े स्तर पर कागज और कागजी कार्यों से बचा जा सकता है। ऐसा करके बड़े स्तर पर कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी तथा समय की भी बचत होगी। प्रत्येक स्तर पर घर के हर सदस्यों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे ही हम अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को इसके कनेक्शन के लिए पैसे देते हैं, उसी समय से हम इसका प्रयोग दुनिया के किसी भी कोने से उसका आनंद उठाते हैं। वर्तमान युग में दुनिया का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है, इसलिए यहां पर आपको हर प्रकार की सूचना, जैसे अंतरिक्ष, मौसम, तकनीक, दवाई, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, पत्रिका, अखबार, समाचार, खेल, साहित्य, तात्कालिक घटनाएं, राजनीति इत्यादि अनेक क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। आज के अत्याधुनिक वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का मुख्य भाग बन गया है। इसके अभाव में आज हम अपने जीवन में विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने घर में बैठे बैठे देश विदेश या पूरी दुनिया का दृश्य देख पा रहे हैं। इन सब के पीछे इंटरनेट का तीव्र गति से विकास होना ही प्रमुख कारण है। इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी और किसी भी सवाल का हल कुछ ही पलों में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर प्रश्न लिखने के कुछ क्षण बाद स्वतः ही उसका हल भी सामने आ जाता है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से बिना शुल्क के घंटों तक बातें कर सकते हैं। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब है जिसकी सहायता से हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मेल या जरूरी से जरूरी दस्तावेजों को पलक झपकते ही भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट मनोरंजन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से संगीत, गेम, फिल्म, खेल आदि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के मनोरंजक बना सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल घर बैठे बिना किसी परेशानी के और बिना लंबी लाइनों में खड़े हुए किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से होने वाली वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रयोगों ने बाजार की अवधारणाओं को एक नई रूपरेखा प्रदान की है। इंटरनेट के आने से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक असर देखने मिल रहा है। इससे नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं।
1: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे रत्नेश कुमार द्विवेदी की वार्ता। विषय था इंटरनेट विशेषताएं और इसका लाभ। अब आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्य प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड हाई कोर्ट में आज जेएसएससी सीजीएल और अन्य नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्रार्थियों और राज्य सरकार की ओर से पेश की गई दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। टीबी मुक्त भारत को लेकर आज जामताड़ा समाहरणालय परिसर स्थित एसजीएसवाई सभागार में जोश कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित कर्मियों को टीबी के लक्षण, जांच तथा इलाज, सरकारी मदद के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी गईं। साथ ही 2027 तक देश और झारखंड को टीबी मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई गई। इलाज के बाद टीबी मुक्त लोगों को सम्मानित किया गया। सरायकेला जिले में मृत चौकीदारों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा का लाभ दिया गया है। जिला स्तरीय चौकीदार अनुकंपा समिति के निर्णय के आलोक में दो आश्रित अभ्यर्थियों को चौकीदार पद पर नियुक्ति मिली है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत मुरली पहाड़ी पानी टंकी के पास साइबर अपराध में लिप्त तीन साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से चार मोबाइल और छह फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। हजारीबाग के चौपारण में त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। हजारीबाग और बिहार के गयाजी उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित

0: 8 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। और एसडीपीओ विनय भारती के शहादत दिवस पर आज चतरा पुलिस ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि एसडीपीओ शहीद विनय भारती की वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा को पुलिस बल के लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा माना जाता रहेगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: वैज्ञानिक विधि से खेती करूं, माटी कर उपज के बढ़ाऊं।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाइया सब भाई और बहन के रोर मन के रेडियो संगे मनोज और
0: जुगनी बहन दन से
1: जोहार।
0: और ई कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: तब जुगनी बहन, क्या हालचाल है? ढेर दिन बाद भेटाली, बड़ी खुश नजर आओ थी, इसका बात है कि?
0: एकदम बढ़िया है, छोवा पुता मन भी बढ़िया है, और देखो खेती बाड़ी कर काम भी बढ़िया होवे लागल है, सेले बहुत मन भी बड़ा बेस है।
1: हम बुझत थी रोरे वैज्ञानिक तरीका से खेती बाड़ी करत थी, सेले किसन कह थी?
0: एकदम नगद गोश रोरे कहली, हमार मन कर बात के रोरे लुट ले ली की हमरे देखो वैज्ञानिक विधि से खेती करती तो हमरे कर माटी कर उपजो क्षमता भी बढ़िया है, और देखो वैज्ञानिक विधि से खेती करे से फसल बगरा होवेला तो मुनाफा भी बगरा होवेला।
1: देखो बहन, हमके लगा थे कि पहले जे खेती बाड़ी करत रही हमरे मन, वो पारंपरिक तरीका से खेती बाड़ी करत रहे, लेकिन आजकल जे हमरे मन नवा नवा तकनीक का इस्तेमाल करत ही नहीं, जेकर से हमको लगा थे कि जे उत्पादन के जे क्षमता है नी, तनी मनी तो पहले की अपेक्षा में बढ़ोतरी हो जाए।
0: तो भाई बहन मन, बगरा उपज लेवे खातिर वैज्ञानिक विधि से खेती करूं, और सबसे जरूरी बात ये भी है कि हमरे के खेती करे से पहले माटी का जांच भी करे बहुत जरूरी है कि नहीं?
1: सही बात है के, और माटी जांच करे से हमरे मन के पता चलेला कि का उकर में कमी है, का बेसी है, और अगर हमरे मन संतुलन बनाए के चलब तो खेती बाड़ी करे में कोनो दिक्कत नहीं हुई।
0: और माटी का संतुलन बनाए खातिर हमरे के रासायनिक खाद मन कर उपयोग बगरा करे न के, हमरे के जैविक खाद कर उपयोग करे के, इकर से हमरे कर जे माटी कर उपजो क्षमता है से बनल रहेला। देखो हमरे खेती बाड़ी करीला तो खेती बाड़ी में हमरे के माटी कर स्वास्थ्य के बनाए के रखे के, तो हमरे के फसल चक्र के भी अपनाए है, और देखो एखन धान कर खेती है, और धान कर खेती कर पाछे हमरे के खेत खाली हो जाला तो हमरे के दलहनी फसल मन के भी लगाए है, सेकर से हमरे कर मुनाफा बगरा होवे, और हमरे कर माटी का जे उपजो क्षमता रहेला से बनल रहेला, और जे उकर में जे पोषक तत्व मन रहेला से प्राकृतिक रूप से भेटाएला।
1: सही बात कहली जुगनी बहन, और हमरे के एकदम ऐसा तैयारी मन करे के चाहिए ताकि आयु वाला जो समय है नी, उके हमरे मन के सदुपयोग करे के है, और बेरा बेरा से जे फसल मन हमरे लगाए उकर देखभाल भी हमरे उनके करेक चाहिए। जुगनी बहन देखो, एखन धान कर फसल में लगल है, और तनी दिन बाद देखो कटाई छटाई हो जी, उकर बाद हमरे मन पोरा मन के गाय गोरू ले खाए के लिए रखेला, और बहुत ऐसा किसान भाई मन है जे की उके जलाए देवे ना, तो किसान जलाए चाहिए कि नहीं जलाए चाहिए?
0: तो हमरे के धान के पोरा के जलाए के नखे हमरे के उकर से हमरे के कमाई का साधन बना सकीला। देखो हमरे पुआल के पोरा के हमरे गाय गोरू के खियाए के लिए तो उपयोग में लानबे करीला, लेकिन हमरे उकर से मशरूम उत्पादन भी कर सकेला, जेकर से हमरे के आमदनी बगरा हो सकेला।
1: और संगे संगे जे भूसी मन भेटाला उकर से हमरे मन बहुत सारा चीज कर सकेला, जेती हमरे कर खेती बाड़ी में काम भी आवेला है नहीं?
0: एकदम। तो चलो धान कर पोरा के कचरा नियर हमरे के फेंके के नखे, इके कमाई कर साधन का तेर बना सकेला, इकरे बारे में हमरे जानकारी करब, और इनकर बारे में हमरे के जानकारी करवाबाय विशेषज्ञ वंदना चौबे, और इनकर से बातचीत कर रहे हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
5: किसान साथियों नमस्कार, आज हम जानेंगे धान की पराली और भूसी के बारे में, जो कि ये कचरा के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसको कचरा नहीं कमाई का साधन कैसे बनाएं इसके बारे में, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के इंजीनियर वंदना चौबे। वंदना जी आपको नमस्कार।
6: जी नमस्ते। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और जोहार।
5: आप हमारे किसान भाइयों, हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि धान की पराली और भूसी में अंतर क्या होता है।
6: जी बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो धान की पराली होती है वो धान की कटाई के बाद जो खेत में तना और पत्तियां बच जाती हैं उन्हें हम पराली कहते हैं।
5: जी,
6: वहीं जब धान को मिल से साफ करके चावल निकाला जाता है तो दाने के ऊपर से निकलने वाला कठोर छिलका उसे हम भूसी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो खेत में बचा तना और पत्ता पराली है और चावल के दाने का छिलका जो है वो भूसी है।
5: तो किसान आम तौर पर पराली को जला देते हैं, क्या इसे जलाना सही है?
6: नहीं, बिल्कुल नहीं, पराली जलाना अच्छा विकल्प कतई नहीं है। इससे धुआं और वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ मिट्टी के लिए जो उपयोगी सूक्ष्म जीव और कुछ पोषक तत्व भी प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसान पराली को जलाने के बजाय उसे खेत में मिलाकर कंपोस्ट या जैविक खाद बनाने में उपयोग करे तो वह अवशेष मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद कर सकता है।
5: जी, किसान पराली से और कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं?
6: पराली से बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पराली से हम कंपोस्ट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, कंपोस्ट बना सकते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए जो माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है वह भी पराली से ही बनता है। बायो ब्रिकेट, ईंधन, इन सभी के उपयोग में लाया जा सकता है पराली को। और साथ ही साथ उपयोगी सामग्री तथा कुछ प्रकार के पशु बिछावन जैसे उत्पादन भी बनाए जा सकते हैं। और अगर हम इसको बड़े स्तर पर ले जाना चाहें तो इसका उपयोग पैकेजिंग सामग्री और अन्य जैव आधारित उत्पादों में भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पराली केवल खेत में पड़ा अवशेष नहीं है, बल्कि अगर हम इसे सही तकनीक मिलने पर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं के कच्चे माल के तौर पर भी काम में लिया जा सकता है।
5: जी, अभी आपने कहा बायो ब्रिकेट, तो ये बायो ब्रिकेट क्या होता है और इसमें पराली का क्या उपयोग है?
6: देखिए, बायो ब्रिकेट बेसिकली सूखे कृषि अवशेषों को दबाकर बनाए गए ठोस ईंधन को कहा जाता है। पराली को मशीन की सहायता से दबाकर ऐसे ब्रिकेट बनाए जा सकते हैं जिसका उपयोग कुछ स्थानों पर ईंधन के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जिस पराली को किसान खेत में जलाता था वह उचित संग्रह और प्रोसेसिंग के बाद उपयोगी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
5: जी, अब अगर हम धान की भूसी की बात करें तो इसका क्या उपयोग किया जा सकता है?
6: देखिए, धान की जो भूसी है उसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सिलिका, सेलुलोज और लिग्निन्स। इसलिए भूसी को केवल जलाने या फेंकने के बजाय कई उपयोगी चीजें हम उससे बना सकते हैं, और उन्हें बनाने के लिए हम भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सिलिका पाई जाती है। जैसे कि इससे ईंधन का निर्माण किया

0: जा सकता है। निर्माण सामग्री, मजबूत मिश्रित सामग्री और भूसी की राख जैसे उपयोगी पदार्थ बनाए जा सकते हैं।
1: तो ये राइस हस्क क्या होता है?
0: राइस हस्क, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम धान का प्रसंस्करण करते हैं तो चावल निकालते समय जो उसके ऊपर ही सतह पे जो कठोर उसका छिलका रहता है उसे हम राइस हस्क कहते हैं।
1: जी, तो ये राइस हस्क से बायो कंपोस्टी मटेरियल क्या होता है?
0: जी बिल्कुल, बायो कंपोजिट ऐसी सामग्री होती है जिससे धान की भूसी जैसे प्राकृतिक पदार्थों को किसी उपयुक्त दूसरी सामग्री के साथ मिलाकर एक नई और मजबूत सामग्री तैयार की जाती है। धान की भूसी को पहले अच्छी तरह तैयार किया जाता है, इसके बाद इसे दूसरी सामग्री के साथ मिलाकर दबाव और गर्मी की सहायता से अलग अलग आकार दिए जाते हैं। इसी की सहायता से हम थाली, कटोरी, प्याला, परोसने की थाली और सामान रखने जैसी उपयोगी वस्तु भी बना सकते हैं। इससे किसान ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सीमेंट, रेत और गिट्टी को मिलाकर एक मजबूत कंक्रीट बनाई जाती है, उसी तरह धान की भूसी को दूसरी उपयुक्त सामग्री के साथ मिलाकर बायो कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि किसान की भूसी का उपयोग एक उपयोगी वस्तु बनाने में किया जा सकता है और कृषि अवशेष से अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं।
1: जी, तो भूसी की राख क्या होती है और इसका उपयोग क्या है?
0: देखिए, जब हम धान की भूसी को नियंत्रित तरीके से जलाते हैं तो उससे जो राख प्राप्त होती है उसे हम भूसी की राख कहते हैं, जिसे राइस हस्क ऐश भी कहा जाता है। अच्छी गुणवत्ता की इस राख में सिलिका की मात्रा काफी अधिक हो सकती है, इसी कारण इसका जो उपयोग है सीमेंट और कंक्रीट से जुड़ी सामग्री, विशेष ईंटों और कुछ अन्य औद्योगिक कामों में भी किया जा सकता है। ध्यान रखना जरूरी है कि अच्छी गुणवत्ता की राख बनाने के लिए उचित तापमान और सही तरीके से जलाना आवश्यक है।
1: क्या धान की भूसी का उपयोग रबर और दूसरी औद्योगिक वस्तुओं में भी होता है?
0: बिल्कुल, अच्छी गुणवत्ता की भूसी की जो राख होती है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका उपयोग रबर मजबूती के लिए किया जा सकता है। इससे रबर को मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग निर्माण और दूसरी औद्योगिक वस्तु में भी किया जा सकता है।
1: जी, तो क्या पराली और भूसी से ईंधन भी बनाया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, जब पराली और भूसी अच्छी तरह से सूख जाती है तो उन्हें मशीन की मदद से दबाकर छोटे और सघन टुकड़ों में बदला जाता है। इसे क्रमशः हम ब्रिकेट या पैलेट कहते हैं। ये लकड़ी या अन्य किसी ठोस ईंधन की तरह जलाकर ऊष्मा पैदा करने के काम आ सकती है, लेकिन इसे घर पर सामान्य तरीके से बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए पराली या भूसी से नमी की मात्रा उचित होनी चाहिए और दबाने के लिए कुछ विशेष मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए छोटे किसान अकेले मशीन खरीदने की बजाय किसान समूह या स्वयं सहायता समूह या स्थानीय प्रसंस्करण इकाई के साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं।
1: जी, तो हमारे झारखंड में छोटे छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान इन दोनों अवशेषों से कमाई कैसे कर सकते हैं?
0: जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो छोटे किसान भाई हैं, उनको, हर एक किसान को मशीन खुद खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कारखाने लगाने की आवश्यकता है। किसान समूह, किसान उत्पादन संगठन या स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर पराली और भूसी को एकत्रित कर सकते हैं और उन्हें संबंधित इकाइयों तक पहुँचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पराली मशरूम उगाने वालों या खाद बनाने वाली इकाइयों को दी जा सकती है, और वहीं अगर भूसी की हम बात करें तो प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह किसान मिलकर काम करेंगे तो लागत भी कम लगेगी और आय का नया स्रोत भी बनेगा।
1: जी, अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा किसान भाइयों से सरल सा संदेश है कि धान की पराली और भूसी को कचरा ना समझे। पराली का खाद, मशरूम उत्पादन के लिए माध्यम, ईंधन जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं, जबकि भूसी की राख निर्माण सामग्री और कई उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग होती है। अगर हम कृषि अवशेष को जलाने के बजाय सही तरीके से एकत्रित करें और उसका उपयोग करें और बाजार से जोड़ें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और अतिरिक्त अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए मैं अंत में अपने किसान भाइयों से कहना चाहूंगी कि पराली हो या भूसी, इसे जलाएं नहीं, बचाएं और उपयोग में लाएं। कृषि अवशेष को कचरा नहीं, कमाई का साधन बनाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर वंदना चौबे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को पराली के बारे में, जो हमारे किसान भाई पराली को जला देते हैं और भूसी को भी फेंक देते हैं, इसको कचरा समझते हैं, तो ये कचरे से कमाई का साधन कैसे करें, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। धन्यवाद।
2: तो भाई भाई में जैसे कि खन हमारे सुन ली कि धान कर जो पूरा है उके हमारे मन के कचरा समझे के नखे उके सही रूप से इस्तेमाल करे खे और बहुत सा किसान मन के जला देवे ना तो हमारे मन के जला के नखे और सही रूप से इस्तेमाल करो तो हमारे के फायदा ही फायदा है। तो खन हमारे मन के जानकारी दिले वंदना चौबे और इनका से गुठिया लें कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: तो भाई जानकारी के संगे संगे हमारे के रीझ रंग भी करे खे। तो चलो आज हमारे मन नागपुरी लोकगीत से रीझ करीला कलाकार यशोदा देवी और उनका संगी मनकर गावल गीत कर संगे।

0: तो भाई बहन एखन हमरे मन गीत कर माध्यम से संदेश भी सुन ली और थाकल मन के हमरे मन दूर भी कर ली। और सही बात है, किसान भाई बहन हमरे मन देखसिन के खेती बाड़ी करी ला और सांझ बेरा जब घर ढुकी ला उकर बाद हमरे मन अखड़ा में जाए के नाचे ला डेके ला नहीं, तो दिन भर के जो थकान है वो पूरा मिट जाए ला
1: एकदम। और गीत ऐसा चीज है कि हमरे का थाकल मान के तो दूर करबे करेला। और देखो यह सब एक जगह अखड़ा में जुटल रहेला तो गीत सुनते सुनते हमरे खेती बाड़ी कर जे काम है से के भी साझा करेला कि खेती बाड़ी में हमरे के काते करे है सेकर बारे में एक दूसरे से साझा करेला और उकर जानकारी भी लेवेला।
0: और जानीला जुगनी बहन हमरे कर झारखंड राज्य में कहब तो अब फूल कर खेती बहुत बगरा मात्रा में होवेला और बहुत ऐसा किसान मन है जे की फूल कर खेती भी करे ना।
1: झारखंड में फूल कर खेती ले वातावरण बहुत अच्छा है और फूल कर खेती करके हमरे मन अतिरिक्त आमदनी ले सकेला। तो चलो हमरे ऐसे किसान से बात करेला जे की फूल कर खेती करे ना। और किसान है पवन स्वांसी और इनकर से गुठिया है हमरे का संगी मनोज कुमार।
0: भाई रोड़े के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार, मोर नाम पवन स्वांसी, गांव हितू टोला पार्टोली थाना खुटी जिला खुटी झारखंड।
0: तो पवन भाई रोड़ के पढ़ाई लिखाई में कोनो होए रहे कि नहीं होए रहे?
2: पढ़ाई लिखाई करके तो कोनो नहीं मिलक, बाद में है खेती बाड़ी में उतर गेली हमरे मन।
0: चलो कोई बात नहीं, खेर और खेती बाड़ी कर रही। जमीन मन कितना है?
2: जमीन मन आए हमारे 6-7 एकड़ है।
0: सब दो इन्हें की टाण मन भी है?
2: टाड़ है 4 एकड़, दोइन है 3 एकड़।
0: तो एखन और का खेत में का मन लागल है?
2: एखन हमारे खेत में फूल लागल है, दिवाली वाला है ये है, फिर मिर्चा लागल है, बैगन लागल है, फिर तरबूज लागे वाला है, कल परसों लगा भाई हमारे तो गाछी करके लगाईला वैज्ञानिक विधि से।
0: चलो बेस बात है भाई की, रोडे तो बहुत किस्म किस्म के खेती बाड़ी करी ला। तो रोडे जिसम के फूल कर बारे में बात कर ली, तो फूल कितना ठाव मिले लगाईला?
2: हमारे 4 एकड़ तक में लगाईला, तो इस साल तनिक बरसात कर वजह से हमारे 2 एकड़ में लगा ली, पानी पझर गए कुछ एरिया में।
0: तो फूल में कौन कौन सा फूल है?
2: फूल में हमारे गेंदा फूल है अधिक तर लगाईला।
0: तो गेंदा फूल कर बात कर लेते कर जैसे गाछी मन तैयार करेला चाहे की कर बीजा मन किस रोपेला?
2: इकर हमरे पौधा मंगाईला बंगाल से।
0: बंगाल से पौधा मंगाईला,
2: पौधा वाला है ठीक है ला। कहे की बीजा वाला नहीं छोटा बड़ा है ला और उकर में नर हर मादा दोनों है ला, जे की सुरगुंजा फूल लेखन है ला नहीं एक ठो, तो उकर बिक्री नखे बाजार में जे गोल वाला है ला बढ़िया वाला है ला। पौधा से लान ले खाली गोल वाला है यार, साइज बढ़िया है, बराबर है साइज।
0: ये तो भाई पहले धाव सुन ली कि भाई फूल में नर और मादा भी होला, तो इकर पहचान कैसे होला?
2: इकर पहचान तो जब फूलेला तभी पहचान है ला, बीज में तो नहीं जाने के पड़े ला।
0: बीज में नहीं जानब?
2: हमरे बीज लगा के मन आ रही कि बीज में आसान है कही के, जब रोप दिले तो कुछ सुरगुंजा निकल गए कुछ गोल निकल गए, तो किसान के तो असल में लॉस चल जाते
0: हैं। सही बात है कि तो पौधा किन के मंगवाई के लगाईला है कि नहीं?
2: हाँ, किन के मंगवाई के लगाई,
0: जैसे कि मान ली के शुरुआत में हमरे मन इकर गाछी के लगा ली, तो लगाए के बेरा का कामन करेला?
2: लगाए के बेरा हमरे गाछी के है रिडोमिल का है ना फंगीसाइड, जैसे प्रति लीटर 2 ग्राम करके घोल बना के ऊपर में 5 मिनट जड़ के खाली जोबड़ी ला, उकर बादे गढ़ा में जहाँ रोपाए ना हुआ ले जाएला, वहाँ 1-2 दाना DOP लगाईला, 1 मुठा जैसन गोबर लगाईला सूखा गोबर जो कि 1-1.5 साल होल वाला, उकर बादे फोरेट का है ना जे कि दीमक और जमीन में कीट मन रहेला सेके मारे के वाला उके भी मसाईला, उके पूरा मट्टी से मिलाए के फिर जाके रोप देला गेंदा फूल पौधा।
0: तो पौधा से पौधा कर दूरी कितना रहे?
2: पौधा कर पौधा 2 फीट और कतार से कतार 3 फीट रखेला।
0: 3 फीट रखे से बढ़िया हुए ला कि नहीं?
2: उकर से मतलब ब्रांच ज्यादा निकले, हमारे ज्यादा उपजाना है नहीं, और कम उपजाना है तो 1 फीट में रोप सकेला। एक के पौधा में हमारे का अगर 3 माला तक आते तो 2 फीट जगह देख पड़ी।
0: किसी के बहुत सारे किसान मन करेना चाहे हमारे मन घर में रोपी ला, तो इसे पौधा जैसे बढ़े ला नहीं तो ऊपर फुनगी का हमारे मन तोड़ी ला ताकि ऊपर से तनी फैले। सही है कि
2: सही है
0: उसी करेक्शन?
2: हाँ, उसके जितना तोड़बे समय से उतना पौधा के बनाई और फूल खिलक दे, पौधा बना के छोड़ दी, सारा चारा के फूले ले ले यार, पौधा एकदम रुक जाए। तो पौधा के ब्रांच अगर बढ़ाए का है तो कली के एकदम जल्दी जल्दी तोड़ो। हमरे मन तो एकदम पत्ता से हल्का सा दिसे ला हरे तोड़ देला ताकि वो कली में एक भी खाना मतलब बहुत कम परसेंट खाना खाए ताकि वो तुरंत डाली फेंक चालू करे।
0: कितना देर तक हमरे मन के तोड़े के चाहिए?
2: हमरे के फूल खिलवाए से 1 महीना पहले बंद कर देला, हमरे 2.5 महीना कर फसल है के तैयार है में, जब लास्ट जुलाई या 1 अगस्त में लगाईला, 10 अगस्त आसपास या

0: तो 25 जुलाई आसपास लगेला नहीं तो हमरे 20-22 सितंबर में बंद कर देला कली तोड़े
1: करवा फिर फूले कर कोढ़ी शुरू हो जाएगा।
0: हाँ कोढ़ी शुरू हो जाएगा।
1: तो जैसे कि और पौधा मन में चाहे फसल मन में देखभाल की जरूरत पड़े ला तीकर में का का देखभाल करे से बढ़िया होला?
0: तीकर में देखभाल बहुत कम है फूल में। फूल में रोप के हमरे 10 दिन में कोड़ा देला और रिडोमिल और एक तरह का स्प्रे भी करेला फर्स्ट कोड़ा, फिर और 10 दिन बाद हमरे सेकेंड कोड़ा करके मिट्टी चालेला, सेकेंड कोड़ा करके फिर हमरे रिडोमिल और फिप्रोनिल वगैरह मन के स्प्रे करेला कीटनाशक है कि रस चूसक वाला तो के मारेला।
1: तो जैसे कहले रहे कि 2.5 महीना करी फसल है कि तो 2.5 महीना में पूरा पूरी तैयार हो जाए कितना बेर हो रहा तोड़ेला तैयार होकर पाछे?
0: पानी अगर है तो पूरा साल चलेला लेकिन 2.5 महीना में पूरा 2 से 3 लरी देख लायक बन जाए लायक ब्रांच।
1: तो कहे के मतलब जैसे कहले कि अगर पानी है तो सालों भर खेती कर भेजी और फसल मिलते रही है कि
0: सालों भर।
1: तो पटाए कर का सुविधा है रोड कर?
0: हमरे में तो कुआं है और तालाब है।
1: तो कितना दिन का अंतराल में पटाईला?
0: धूप दिन हमरे 4-5 दिन में पटाईला।
1: 4-5 दिन
0: में मिट्टी का हिसाब, अगर मिट्टी में रोरिक बलवाही आए तो पानी जल्दी नीचे चल जाएगा क्योंकि तो देखे पड़ी।
1: और ऐसे अगर मान लीजिए जाड़ा का मौसम चाहे और मौसम में कितना देर में?
0: 8 दिन में जाड़ा मौसम
1: 8 दिन में।
0: 8 दिन
1: जैसे कि रोड माटी कर बात कर ले तो कौन सा माटी कर बढ़िया होला सुटेबल होला?
0: लाल मिट्टी
1: होला।
0: लाल मिट्टी
1: मिट्टी में नहीं होला
0: होला लेकिन कुछ झुलसा रख
1: लागेला
0: ज्यादा दवा लागेला ड्रिंचिंग करे खेला लेकिन जड़ बचा के लेखने जो बताए ना कि उठा रग लागेला जड़ गलन लागेला वह सब ज्यादा लागेला और झुलसा आएला।
1: मान ली की बीमारी में हो गए तो देखभाल खुदे करेला कि केकरो को बुलाईला?
0: खुदे करेला और पहले तो एनजीओ वाला आत रहे तो मन बता देना यार आप सीख ली तो खुदे करेला सब दिन तो क्या अभी।
1: पवन भाई रोर के हमारे कार्यक्रम में आली इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: ठीक जोहार हमारे वट से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो भाई बहन मन देख सन की अखन हमारे मन सुन ली पवन स्वासी से कि फूल कर खेती हमारे मन के कैसे करे के चाहिए और कौन कौन बेरा में कौन कौन फूल कर हमारे मन खेती करब तो हमारे मन के बगरा से बगरा आमदनी मन भेटे। तो जुगनी बहन हमके लगत है कि आज कर किसान वानी के बेरा सिरात है।
2: तो जाते जाते बता देवेला कि ई कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और ये कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर
3: प्रधानमंत्री किसान मान।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो आए जिले बस इतने दोस्तों दिन फिन फटा तो रोन मन के रेडियो संगी मनोज और
4: जुगनी बहन के देव विदा जोहार।
5: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी दुनिया।
6: हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में बातें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांकेर रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं थी। जहां किसान बंधु, आने वाले दिनों में मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खरीफ की जो फसल पककर तैयार हो रही है उसकी कटाई कर लें तथा उसे सुरक्षित स्थान पर रख लें। फसल काटने के बाद खाली हुए खेतों में 1 से 2 सिंचाई की सुविधा रहने पर तोरिया यानी लोटनी अथवा हरा चारा फसल की खेती कर सकते हैं और असीमित सिंचाई की सुविधा रहने पर आलू, हरा मटर या अनेक सब्जियां जैसे फूलगोभी, बंदा गोभी, फ्रेंच बीन, टमाटर, प्याज वगैरह के साथ साथ मसाला वाली फसलें जैसे धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी वगैरह की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, रबी फसल की समय पर बुवाई के लिए खेत की तैयारी आप शुरू कर दीजिए और आवश्यकता अनुसार बीज, उर्वरक, बीज को उपचारित करने के लिए आवश्यक रसायन, दलहनी फसल के लिए राइजोबियम कल्चर, इन सभी का प्रबंधन आप करिए। जी हाँ ग्रामीण बंधु, वर्तमान मौसम की स्थिति में रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी अब हमें शुरू कर देनी चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जुताई और पाटा ठीक से लगाने की आवश्यकता है। अगर हम मक्का की बात करें किसान भाई फसल विशिष्ट सलाह के अंतर्गत, तो मक्का भुट्टा बनने की अवस्था में है और एफिड्स और थ्रिप्स का प्रकोप इस वक्त हो सकता है। यदि देखा जाए तो इमिडाक्लोरप्रीड 17.8 SL 50 मिलीलीटर या थियोमेथॉक्साम 40 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव आप कर सकते हैं। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों को ये मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा के अंतर्गत सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में फूल आने से लेकर दूध के देने की अवस्था तक नियमित रूप से गांधी कीट की जांच जरूर करते रहें। जी हाँ किसान भाइयों, यदि कीट की संख्या अधिक है तो उन्हें इमिडाक्लोरप्रीड 6% साथ में लेमडा साइहेलोथ्रीन 4% SL 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से हम लेंगे और 200 लीटर पानी में इसे मिलाएंगे और पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे। ये चावल के लिए, धान के लिए किसान भाई। और देर से रोपाई की गई धान जो पुष्प गुच्छ अवस्था में है उसमें लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पानी आप जमा रखिए अभी और 17 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग जरूर कर दीजिए। अरहर की बात अगर की जाए तो अरहर की फसल अभी अपनी चरम वनस्पति वृद्धि अवस्था में है। ग्रामीण बंधु, अगले 5 दिनों तक मौसम हल्के बादलों से ढका रहने, नमी में वृद्धि और दिन रात की मिट्टी और वायुमंडलीय तापमान में कमी के परिणाम स्वरूप कीटों का संक्रमण हो सकता है। यदि पत्ती खाने वाले कीटों का संक्रमण है तो आप एजेडा रेक्टिन 1% EC यानी कि 10,000 PPM 2 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव आप शाम के समय में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ग्रामीण बंधु, बागवानी विशिष्ट सलाह, जो किसान भाई अगात आलू की खेती करना चाहते हैं वे उत्तम किस्म का बीज उर्वरक का प्रबंधन कर लें। अगात आलू की अनुशंसित किस्म हैं कफूरी अशोका, कफूरी फुखराज, इनमें से कोई एक का चुनाव आप कर सकते हैं और 1 एकड़ में बुवाई के लिए 12 क्विंटल बीज, 20 से 30 ग्राम का अंकुरित कंद, 40 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP, 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम गंधक की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर गोभी की बात की जाए तो किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि सितंबर से अक्टूबर में पत्ता गोभी की अगेती बुआई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो अभी तो अक्टूबर का माह चल रहा है, इसलिए आप निश्चित रूप से कर लीजिए। सामान्य किस्मों के लिए हम बता दें कि 300 से 320 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के लिए 120 से 125 ग्राम प्रति एकड़ आपको बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। रोपाई के लिए दूरी इस प्रकार से रखिए, 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 आप रखिए 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर रख लीजिए। उन्नत किस्में गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड, प्राइड ऑफ इंडिया और संकर किस्में गंगा, जमुना और कावेरी। जी हाँ ग्रामीण बंधु, हमारे बहुत से ग्रामीण भाई बहन हैं जो खेतीबाड़ी के साथ साथ स्वरोजगार करते हैं और स्वरोजगार में मुर्गी पालन को अपनाए हुए हैं। तो हम उनको बताते चलें कि मक्का एवं गेहूं के प्रोटीन युक्त हाइड्रोपोनिक्स चारा 10% मुर्गी दाना के अलावा आप उन्हें दीजिए। सफ़ेद दस्त से बचाव के लिए टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 100 मुर्गी को आप दें। अगर फिर भी दस्त की समस्या सही नहीं हो रही है तो टेट्रासाइक्लिन पाउडर 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 100 मुर्गी को दें। किसान भाई बहन, ये हुई बातें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांकेर रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। जी हाँ किसान बंधु, कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है नवजात बछड़ों की देखभाल। जी हाँ, विशेषज्ञ हैं आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू डॉक्टर प्रमोद कुमार
1: के जो छौना छौनी हैं उनको किस तरह से हम देखभाल करें कि बाढ़ बियान अनुकूल रहे, कोई बुरा असर उस पर ना पड़े। और इन तमाम बातों पे जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: सर। सबसे पहले तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि नवजात बछड़े बछड़ियाँ, मेमने, सूकर के बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार करें।
2: पशुपालन का भविष्य जो है उनके बच्चे पर ही निर्भर करता है। बच्चे जितने स्वस्थ होंगे जी तो भविष्य के पशु उतने ही अच्छे होंगे और उनकी उत्पादकता बहुत अच्छी रहेगी। तो इस अगर दिमाग में बात को रख कर करके कि बछड़े कैसे हमारे स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनके पास गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सूकर रखे हुए हैं और वो गर्भावस्था से अगर गुजर रहे हैं तो उनको 2 माह पूर्व से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 2 माह पूर्व तैयारी शुरू करने का मतलब ये हुआ कि उनको अलग से हम अनाज खिलाना शुरू कर दें। ये अनाज गायों में कितना खिलाएं, भैंसों को कितना दें, बकरियों को कितना दें, भेड़ों को कितना दें, सुकरी को कितना दें, ये किसान भाइयों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर उनके पास अंदाज है कि ये गाय या भैंस हमको बच्चा देने के बाद 10 किलो दूध देगी या 5 किलो दूध देगी, अगर ये अंदाज वो कर लेते हैं तो इसके हिसाब से वो स्वयं जोड़ सकते हैं कि 1 किलो दूध उत्पादन के लिए गायों को प्रति 1 किलो दूध के लिए 400 ग्राम आना चाहिए और भैंस को प्रति 1 किलो दूध के लिए 500 ग्राम आना चाहिए और इसके अतिरिक्त 1.5 से 2 किलो उसके शरीर के लिए भी चाहिए। यानी कि लगभग 5 से 6 किलो अगर 10 किलो दूध देने वाली गाय को अगर अनाज को खिलाते हैं तो वो गाय आपको 10 किलो दूध देगी या भैंस भी आपको दूध देगी। तो उनको इतना अनाज 3 किलो सुबह 3 किलो शाम प्लस और 6 किलो भूसा अगर खिलाते हैं तो वो गाय आपको 2 महीने के बाद जब बच्चा देगी तो वो पूरी तरह स्वस्थ होगी और स्वस्थ पशु के थन का विकास पूरा पूरा होता है। जब पूरा पूरा थन का विकास होगा तो आपको वो पूरा पूरा दूध देगी। साथ में जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल मिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो बाजार में पाउडर उपलब्ध है, कुछ जगह अस्पतालों में भी उपलब्ध है। तो आप जहाँ कहीं से भी हो, बाजार से हो या पशु अस्पताल से हो, आप ले करके 50 ग्राम मिनरल गाय एवं भैंस को प्रतिदिन दें। और अब बात आती है कि बकरियों और भेड़ों को, तो बकरियों और भेड़ों को चूंकि इनकी गर्भावस्था कम दिन की होती है, 5 महीने की होती है, तो इन्हें भी 2 महीने पहले से 150-200 ग्राम अनाज कुछ भी आप उसको दीजिए और मिनरल मिक्सर जो है एक चम्मच से दो चम्मच मतलब 5 से 10 ग्राम प्रति पशु रोज देना चाहिए।
1: अच्छा।
2: सुकरियों को करीब उनको 1.5 से 2 किलो अनाज की ज़रूरत है और उन्हें भी मिनरल मिक्सर 20 से 25 ग्राम अगर देते हैं तो उनके बछड़े और सुकर दोनों ही स्वस्थ होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि इन पशुओं जो गर्भवती पशु हमारे हैं उनको 2 माह पूर्व से ही हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो भीड़ में न रहें ताकि दूसरे पशु उनको चोट ना पहुंचाएंगे। चोट पहुंचाने पर उनका गर्भपात हो सकता है।
1: अच्छा।
2: तो ऐसे में पशुपालक भाई ये ऐसे तो गायें या पशु स्वयं ही जो गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं उन्हें देखा गया है कि या तो वो पशु सबसे आगे होते हैं या झुंड में सबसे पीछे होते हैं। इस तरह से वो अपना बचाव खुद करते हैं लेकिन कभी कभी हमारी नासमझी से भी नुकसान होता है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि उन्हें भीड़ से अलग कर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आराम कर सकें और उनका समय पूर्व गर्भपात ना हो।
1: अच्छा।
2: इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि बछड़े जो हमारे पैदा होने वाले हैं या छौनी पैदा होने वाले हैं या सुकर के बच्चे पैदा होने वाले हैं तो उनको कैसे बचाएं कृमि से। पेट में जो कीड़े होते हैं उसको बचाने के लिए हमें गर्भवती पशु को ही 15 दिन पूर्व पशु चिकित्सा सलाह से उनको कृमिनाशक दवा दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसके पेट में बच्चे पल रहे हैं उनमें भी जो कृमि होगा वो बाहर आ जाएगा।
1: अच्छा।
2: इस तरह से जन्म से पूर्व ही उनके पेट में कृमि नहीं होने पर वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होंगे। इसके बाद पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो पशु गर्भावस्था में हैं उनको जरूर निश्चित रूप से जब पाल दिलाए हैं आप प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से दोनों स्थिति में उसका आपको समय नोट करके रखना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि आप देख लीजिए कि गाय अगर है तो 280 दिन पूरा हो गया है तो आप पूरी तरह से निगरानी करेंगे क्योंकि गायों में 280 प्लस माइनस 5 में 275 से 285 दिन के बाद बीच में बच्चा देती है। इसी तरह से भैंस लगभग 310 दिन पर बच्चा देती है। बकरी और भेड़ 148 से 151 दिन पर बच्चा देती है। सुकरी 114 दिन पर बच्चे देती है। तो अगर आप ये समय जोड़ कर रखे हुए हैं तो आप इस समय से 3 से 4 दिन पूर्व आप उसका निगरानी बढ़ा दें और देखें कि अगर ये पशु बच्चा देने की स्थिति में है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों को ये देखना चाहिए कि कोई भी गर्भवती पशु अगर पूंछ खड़ा कर दे रहा है।
1: अच्छा।
2: और उसके थन में लग रहा है कि अब दूध निकल जाएगा तो आप ये मान के चलें कि अब ये पशु 24 घंटे के अंदर हमको बच्चा देगी तो उसे हम घर में ही रखें और उसे के पास भीड़ ना लगाएं क्योंकि जब हम पशु के पास भीड़ लगाते हैं तो गर्भवती पशु बच्चा देने में शर्माती है और नतीजा कि वो बच्चा नहीं दे पाती है।
1: अच्छा।
2: दूसरा वहाँ पर कुत्ते या दूसरे जानवरों को नहीं रखना चाहिए। उससे भी गर्भवती पशु हिंसक पशुओं के डर से भी बच्चे नहीं देती है। तो इनसे पशुपालकों को चाहिए कि भीड़ और हिंसक पशु को उसके नजदीक न जाने दें।
1: उन्हें सुरक्षित बात सामने आई
2: सुरक्षित महसूस कराएं।
1: अच्छा।
2: साथ में पशुपालक भाई ये बात का ध्यान रखें कि हमारे देहात में कहावत भी है और घाघ कवि ने बहुत हजारों साल पहले ये बात बोली है कि अगर सावन में गधी अगर बच्चा देती है और गाय अगर भादों में बच्चा देती है और भैंस माघ में बच्चा देती है तो उसके बछड़े के बचने की संभावना या गाय के बचने की संभावना कम होती है। तो ऐसे में पशुपालक भाई इस तरह से अपने गाय का प्लानिंग करें कि वो गाय भादों में बच्चा न दे और भैंस माघ महीने में बच्चा न दे क्योंकि बच्चा बचाना मुश्किल होता है क्योंकि ये मौसम जो है बछड़ों के लिए प्रतिकूल होता है। तो ये काम पहले से लोगों को करना चाहिए। इसके बाद अगर आप देख लिए कि गाय या भैंस बच्चा देने लगी तो आपने अब बच्चा देगी तो बच्चा देने पर क्या करना चाहिए। बच्चा देने पर ये आप ध्यान रखें कि गाय 2 से 8 घंटे में या भैंस झार गिराती है तो आप 2 से 8 घंटे तक उसका इंतजार करें।
1: अच्छा।
2: तत्पश्चात अगर न गिराती है तो पशुपालक भाइयों को चाहिए घबराना नहीं। उन्हें चाहिए कि उसको 100 ग्राम हल्दी 100 ग्राम सौंठ 50 ग्राम अजवाइन 100 ग्राम खाने वाला सोडा 100 ग्राम सरसों तेल में पका करके और 250 ग्राम गुड़ मिला करके उसको 15 से 16 दिन दें ताकि उसे बैजानी की सफाई पूरी पूरी हो सके।
1: अच्छा।
2: और पशु चिकित्सक सलाह से कोई भी एक एंटीबायोटिक 3 दिन चलवा देंगे तो नहीं भी झार गिराने पर उनको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गाय की तरफ हुआ। दूसरी तरफ आता है कि बछड़ा जो बाहर आया है उसे क्या करें। जब गाय या भैंस या बकरी बच्चा दे रही है तो आप ये जरूर ध्यान दें कि जो बच्चा होता है वो पानी की थैली में होता है। पानी की थैली फूटने के बाद उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो नाभि के द्वारा बच्चे को मिलता रहता है वो खत्म हो जाता है। तो 2 घंटे के अंदर अगर गर्भवती गाय भैंस बकरी सुकर अगर बच्चा नहीं दे रहे हैं तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें कि क्या परेशानी है और उस परेशानी को 2 घंटे के अंदर दूर करेंगे तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो बछड़े के बचने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और दूसरा कि गाय या भैंस या बकरी कम थकेगी

तो वो जल्दी से जल्दी भोजन पर लौट जाएगी। तो पशुपालक भाई जब बछड़ा बाहर आ जाता है तो अब क्या करें, बछड़ा बाहर आ गया तो आप यस बकरी के मेमने आ गए हैं बाहर में, छौने आ गए हैं शुक्री के, तो इनको अब आपको करना चाहिए क्या कि नाभि जो उनका है

0: चढ़ जाएगा तो वो पकेगा नहीं। नहीं तो आए दिन हम लोग देखते हैं अस्पताल में कि नाभि पका हुआ है, फिर उसे ऑपरेशन करना पड़ता है और उसे अनावश्यक रूप से पशुपालकों को खर्च करना पड़ता है, उससे बच सकते हैं हम। दूसरी बात ये कि गाय और भैंस जब बच्चे देते हैं तो वो अपने से जीभ से चाट कर करके उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये जरूर पशुपालक भाई ध्यान रखें कि पशु का जीभ जो है काफ़ी खुरदरा होता है, गाय का और भैंस का। वो क्या करते हैं कि नाभि को भी नोच देते हैं या चाटने के क्रम में कवर जाता है, तो उसे इन्फेक्शन होना निश्चित होता है। तो बच्चा देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो नाभि ना चाटें जासूम या बाहर उसको ना नोचें जासूम। तीसरी बात ये कि जब बछड़ा बाहर आ गया है तो उसे अब दूध की ज़रूरत है, क्योंकि जो देहात में अंग्रेजी में हम लोग क्लस्ट्रम बोलते हैं, देहात में फेनुस कहते हैं, वो उसका जीवन का वरदान है, भगवान के द्वारा गया एक अमृत है जिसे उसको 4 घंटे के अंदर ही पिलाना है। अगर 4 घंटे के अंदर नहीं पिलाते हैं तो आप अपने बछड़े बछड़ियों बकरियों के बच्चे जो हैं, सुकरी के जो छौने हैं, उनको आप निमोनिया से और डायरिया से नहीं बचा सकते हैं। तो इनको 4 घंटे के अंदर झार गाय गिराए या ना गिराए, आप इसको 4 घंटे के अंदर
1: पिला
0: दूध
1: दीजिए।
0: फेनुस जरूर पिलाइए। अब बात आती है कितना फेनुस पिलाएं, तो ये बछड़े का वजन आप करिए और उसको देखिए, अगर आपका बछड़ा 20 किलो का है तो उसे लगभग 2 किलो यानी 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, इसी तरह से 30 किलो का अगर बछड़ा है तो 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम वो फेनुस पिलाएं। और बकरियों में तो इतना दूध होता नहीं है, जो भी दूध होता है उसे आप पिलाएं, शुक्री के ही बच्चे में है कि जितना वो दूध पी सकता है उसको पिलाएं। इसके पिलाने से 4 घंटे के अंदर आपको ये समस्या जो हमने बताया पूर्व में कि पतला दस्त और निमोनिया, ये दोनों से वो नहीं मरेंगे। तत्पश्चात आता है कि ये जो हमारे गाय के बच्चे हैं भैंस के बच्चे हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर कृमि की दवा निश्चित रूप से
1: पिलाना चाहिए,
0: प्रथम खुराक 1 सप्ताह के अंदर दे देना चाहिए।
1: दे देना
0: इससे क्या
1: चाहिए।
0: होता है कि वो पूरे जो 1 हाथ 1.5 हाथ का आप देखते हैं होंगे फीता कृमि रहती है, एस्केरियोसिस हम लोग बोलते हैं, वो नहीं होगा। और दूसरी खुराक पुनः 20 दिन पर दें, तीसरी खुराक भी 20 दिन पर दें, इस तरह से आपका बछड़े 2 महीने के हो जाएंगे और 2 महीने के बाद प्रत्येक 3 महीने पर आप उसको कृमिनाशक दवा दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सुकर के बच्चे को रखे हुए हैं तो आप उसको 3रा दिन और 14वां दिन, चूंकि उसमें आयरन की कमी होती है तो उनको निश्चित रूप से आयरन का इंजेक्शन 3रा दिन और 14वां दिन अगर लगवा देते हैं तो सुकर के बच्चे में मृत्यु काफ़ी कम हो जाती है।
1: बछड़े में
0: सुकर के जो बच्चे हैं
1: उसमें
0: छौना छौनी कहते हैं
1: जी उसमें
0: उनमें पिगलेट एनीमिया, लोहे की कमी से उनमें खून की कमी हो जाती है। तो इस एनीमिया को रोकने के लिए आप आयरन का इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध है फेइटास नाम का, आप उसको
1: दे
0: 1 ml
1: सकते।
0: इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे गाय के बछड़े आते हैं बाहर में, वो चूंकि अभी नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, आप जितने अच्छे नस्ल की सांड से पाल दिलवाते हैं या सीमेन का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे दूध देने वाली गायों की चमड़ी पतली होती है तो उनके बच्चे की भी चमड़ी पतली होती है, तो उन पर वायु परजीवी जो आपके गांव देहात में चमोकन अठैल उफरा कहते हैं, इससे उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि ये उसे खून चूस लेंगे तो वो पूरी मजबूती से वो बड़े नहीं हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए मैं पशुपालकों को ये सलाह दूंगा कि अपने पशु से मिल करके या तो दवा लगाने की आ रही है उसे लगाएं 10 दिन 12 दिन पर, दूसरी उपाय है कि मुंह से दवा खिलाने की भी आ रही है, वो आइवरमेक्टिन का टैबलेट आता है तो उसके वजन के हिसाब से
1: उसे
0: कितनी
1: खिलाएं।
0: टैबलेट की ज़रूरत है ये पशु आपको बताएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि उसका वजन कितना है तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर भी दवाई डाल सकते हैं, वो 1 ml दवा 10 किलो वजन पर पीठ पर डाली जाती है। तीसरा है आप सुई दे सकते हैं कि वजन कितना है, तो उसके हिसाब से आप 1 ml पर 50 kg के हिसाब से 50 किलो वजन पर 1 ml चमड़ी में सुई दी जाती है। तो ये आप कोई भी चीज़ें जो है अपने पशुओं से सलाह कर करके उसको दें ताकि वायु परजीवी का उस पर असर नहीं हो। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि 2 महीने के बाद जैसे ही आपका ये गाय का जो बच्चा है बछड़ा या बछड़ी भैंस का बच्चा, उसे दूध की मात्रा घटा दें, क्योंकि जब जानवर जुगाली करने लगता है तो उसके लिए दूध का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। उसके बजाय उसको दूध कम कर करके आप अनाज की मात्रा बढ़ाएं ताकि उसका बढ़वार पूरा बना रहे। दूसरा कि अगर उसको मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहेंगे और ये कृमिनाशक दवा देंगे तो उसका पेट जो बाहर निकलता है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चे जो बढ़ने लगते हैं तो उनको कैल्शियम कमी होने लगती है, इसीलिए भगवान ने उनको माताओं के थन में या स्तन में दूध जो है

0: वो पूरा आया रहता है। और उससे चूंकि वो आदमी को ही ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में उनको घटा करके आप अनाज दे करके और मिनरल मिक्सर दे करके उसको इस पेट निकलने की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे 2 महीने के बाद अगर दूध कम कर देते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बछड़े का बढ़वार भी बहुत अच्छा रहेगा।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी। नवजात बछड़े, बछड़ियाँ, मेमने, सूकर के छौना छौनी, भैंस के काड़ा काड़ी के बारे में जानकारियाँ दी, किस प्रकार उनकी देखरेख करनी चाहिए नवजात बछड़े की। आप हमारे स्टूडियो में आए सर, इसके लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। हाँ किसान भाइयों, और अब इसी के साथ अपने भाई संतोष कुमार को भी कार्यक्रम खेती बारी से आज्ञा दीजिए।

हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे नाची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
7: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
6: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
7: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए
8: एनएसबी कराने?
7: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से रांची के गढ़ खटंगा स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवनों का किया उद्घाटन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 387 विद्यार्थियों को दी उपाधि। कहा, किसानों की समृद्धि से जुड़ी है देश की समृद्धि। झारखंड उच्च न्यायालय में जेएसएससी सीजीएल मामले में सुनवाई हुई पूरी, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, कल जेपीएससी मामले में होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का रामगढ़ जिले के नेमरा में हुआ अंतिम संस्कार। हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि। नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधायक समेत कई लोग हुए शामिल। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल रांची के जेएससीए स्टेडियम में शाम 7 बजे से। अभ्यास सत्र में आज दोनों टीमों ने बहाया पसीना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से रांची के गढ़ खटंगा स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। संस्थान में कृषि और किसान कल्याण से जुड़े शोध को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा कि आधुनिक कृषि के विकास और किसानों की आय बढ़ाने में कृषि अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है।
10: हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, मैं ऐसा कहता हूँ, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान उसकी आत्मा है। किसान भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान से कम भी नहीं है, जो 24 घंटा मेहनत करता है। इसलिए चाहे सरकारें किसी की हो, राज्य और केंद्र मिलकर यदि किसान को समृद्ध बनाएंगे, तभी हमारा इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा।

0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में कृषि की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि किसान की समृद्धि सीधे देश की समृद्धि से जुड़ी है। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 387 छात्र छात्राओं को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD की उपाधि प्रदान की गई।
1: उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कृषि केवल अन्न उत्पादन का माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान की समृद्धि और देश की समृद्धि सीधे जुड़ी हुई है। कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल कृषि शिक्षा तक सीमित नहीं हो सकती।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में अदालत ने आज JSSC CGL मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कल JPSC मामले में भी सुनवाई होनी है, इसके बाद ही परीक्षा रद्द करने के मामलों में कोर्ट फैसला सुनाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण को स्थानीय जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया गया। समाहरणालय परिसर में हुई बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हंसदा ने RCT और कौशल विकास केंद्रों में युवाओं की रुचि, योग्यता और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया। हेमंत सोरेन ने संथाली रीति रिवाज से अपनी मां को मुखाग्नि दी। रूपी सोरेन के अंतिम संस्कार में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक मथुरा महतो, शिकारीपाड़ा विधायक राजेश कश्यप, शिल्पी नेहा तिर्की, महुआ माझी और ममता देवी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। JMM और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग भी अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने नेमरा पहुंचे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यह यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की यह सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है खदान मजदूर कल्याण योजना।
2: देश करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदनशीलता से एक साथ लाना होगा ताकि श्रमिकों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
0: कोडरमा में पत्थर खदानों से जुड़े मजदूरों का कोई संगठन तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र के तहत जिले में मजदूरों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। कोडरमा जिले में वन अधिनियम लागू होने के बाद माइका खदानें बंद हो गईं। इसके बाद पत्थर व्यवसाय के जरिए उन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिला।
3: मेरा नाम केदार साहुआ मजदूर है। पहले 8 घंटा के बजाय 12 घंटा खटाया जाता था, कोई छुट्टी नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी एक मोदी जी का कानून आया है, अब थोड़ा सा राहत मिला है। अब तो 8 घंटा काम करवाता है, बीच में 1 घंटा रेस्ट भी देता है और दवा दारू देता है और समय पर हम लोग को

0: जो गर्दा हम लोग खाते हैं उसके लेकर अब गुड़ भी देने लगा है।
1: हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो हम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है, बेंच वेंच का व्यवस्था वहाँ पर किया गया है, अगर किसी को चोट लग जाता है तो वहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था है।
2: सरायकेला खरसावां जिले ने एचआईवी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि समुदाय स्तर पर एचआईवी जांच की पहुंच मजबूत की गई, वहीं समय पर वायरल लोड टेस्टिंग और नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई, जिससे वायरल सप्रेशन में मदद मिली। पाकुड़ में डकैती की योजना बना रहे चार शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि उनके पास से दो देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं।
3: पाकुड़ में एक राशन की दुकान है, वहां लूटपाट की घटना करने का प्रयास किया गया था और इसी क्रम में फायरिंग की गई थी। तो इस कांड का उद्भेदन करने के लिए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। तो एसआईटी के द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचा गया, उस जगह का घेराव किया गया और वहां पर चार अज्ञात अपराधकर्मी पकड़े गए। दो वहां से भागने सफल हुए हैं अंधेरे का कारण होके। इसमें जो अपराधकर्मी पकड़े गए हैं उनके पास से तीन हथियार मिले हैं।
2: लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से धनबाद के सर्किट हाउस में पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व, संघर्ष तथा राजनीतिक योगदान को याद किया। क्रिकेट। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल रांची के JSCA स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों ने आज स्टेडियम में अभ्यास किया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि मैच के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से रांची के गढ़ खटंगा स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवनों का किया उद्घाटन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 387 विद्यार्थियों को दी उपाधि, कहा किसानों की समृद्धि से जुड़ी है देश की समृद्धि। झारखंड उच्च न्यायालय में JSSC CGL मामले में सुनवाई हुई पूरी, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, कल JPSC मामले में होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का रामगढ़ जिले के नेमरा में हुआ अंतिम संस्कार, हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि। नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधायक समेत कई लोग हुए शामिल। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल रांची के JSCA स्टेडियम में शाम 7 बजे से। अभ्यास सत्र में आज दोनों टीमों ने बहाया पसीना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
5: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
4: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
5: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
4: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
5: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
5: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
7: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
5: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
7: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
5: और लड़के की 21 वर्ष है।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद में सुगम यातायात बड़ी चुनौती है।

0: लेकिन दुर्गा पूजा से पहले जिला प्रशासन इसे आसान करने में जुटा है। कल जिले में दिशा की बैठक हुई तो पूजा से पहले सड़कों की मरम्मत पर भी चर्चा हुई। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने बताया कि जिन भी सड़कों की मरम्मत की जरूरत है उसे पूजा से पहले दुरुस्त करने को कहा है।
1: दुर्गा पूजा के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने पूरे जिला में रोड का मरम्मत हो और फोर लेन का, उसका तो पारित हो ही गया, पास करवा ही दिया हमने, इसका मरम्मत के लिए हमने बोला है। बाघमारा में खास करके एक सुनादी रेलवे फाटक है, जाम का स्थिति है, वहां पे भी हमने अभी निर्देश दिया कि उसको तुरंत वहां चाहे ट्रैफिक पुलिस दे या तो रोड चौड़ीकरण हो जाए।
0: वहीं जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित ना हो इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसके बाद यह कोशिश की जाएगी कि पूजा में छोटी गाड़ियों को शहर में एंट्री की इजाजत दी जाए ताकि पूजा पंडालों के दर्शन को निकले परिवारों को परेशानी ना हो।
2: कल हम लोग भी घूमेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि गोविंदपुर में आज भी अतिक्रमण हटाया गया है, कल भी हटेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अतिक्रमण हटाना, रोड को स्पॉटलेस बनाना, जो पानी का जल जमाव है उसको खत्म करना, बिजली का तार ठीक करना, ये सब अभी मुहिम चलेगी। अगले एक सप्ताह में ये सब चीज़ें ठीक होगी और ट्रैफिक चलान भी मोस्टली जो रोड साइड गाड़ियाँ खड़ी रहती है वो भी मुद्दा आज उठा है, उस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई अभी करने जा रहे हैं।
0: इधर मेयर संजीव सिंह ने बताया कि धनबाद नगर निगम भी अपने स्तर से पूजा की तैयारी में जुटा है, सड़कों की साफ सफाई कराई जा रही है, वहीं पूजा के दौरान गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह चिन्हित की जा रही है।
3: वो हम लोग स्ट्रीट लाइट का जो टेंडर कराए थे वो टेंडर खुल गया है और मुझे ये लगता है कि पूजा से पहले ही हम लोग का प्रयास है तो उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करा रहे हैं।
0: जिला समाहरणालय सभागार में कल लंबे अंतराल के बाद दिशा की बैठक हुई। बैठक के बाद सांसद विधायकों की नाराजगी भी दिखी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि चर्चाएं तो कई मुद्दों पर हुई है पर इस बैठक का ना तो कोई निष्कर्ष निकलने वाला है और ना ही कोई काम होने वाला।
1: पेयजल की समस्या है, उस मुद्दे पर हम लोगों ने बात रखी है लेकिन इस बैठक का कोई फलाफल निकलने वाला नहीं है। पदाधिकारियों ने भी स्वीकार किया है और नहीं चाहते हुए भी कि बैठक होती है, यहाँ से रांची जाता है, सब मामला ठप हो जाता है। खास करके पेयजल पे जो बातें आई, जो श्रीराम ईपीसी काम कर रहा है, पांच पांच योजना धनबाद में लिया है, किसी का फलाफल नहीं निकल रहा, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और नगर विकास उसको टर्मिनेट भी कर दिया है, पीएचडी भी नहीं किया है, यहाँ से चला भी गया है राज्य सरकार के पास लेकिन अभी तक कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए पीने के पानी की योजनाएं इसी प्रकार से ठप रहेंगी। जहाँ तक मैथन फेज टू की बात है उसको भी उठाए, वहाँ जुटको ने अभी देखिए 22 में उनको पूरा होना था उस योजना को, जो धनबाद के लोगों को पानी मिले, लेकिन अभी तक योजना पूरी नहीं हुई है। अभी भी 1.5-2 साल का आश्वासन मिला है कि कम से कम ठीक ठाक से चलेगा तो 2 साल लगेगा और पानी चलाने।
0: बहरहाल जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के बीच उपायुक्त आदित्य रंजन ने आश्वस्त किया है कि जिन भी एजेंडों पर बैठक में चर्चा की गई है प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम कर लोगों को विभिन्न समस्याओं से राहत दिलाई जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
4: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आपके साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी फांसी के बाद। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार थे अनु मलिक।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, फिल्म थी अलग अलग। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी डकैत और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संध्या, जिसके तहत हम आपको सुनवा रहे थे लता मंगेशकर के गाए कुछ फिल्मी गाने। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उजाले की ओर, इसके तहत आइए सुनते हैं रविंद्र पांडे की वार्ता। विषय है शिक्षा और रोजगार के बीच समन्वय हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम।

शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय हेतु कौशल विकास कार्यक्रम। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। देश की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि इस युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किया जाए तो भारत विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बन सकता है। आज केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक कौशल भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं का रोजगार योग्य बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना है। शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय का महत्व। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, नैतिक मूल्य एवं बौद्धिक क्षमता प्रदान करती है, जबकि कौशल विकास व्यक्ति को व्यवहारिक दक्षता एवं रोजगार प्राप्त करने की योग्यता देता है। जब शिक्षा और कौशल का समन्वय होता है, तब विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उद्योगों एवं बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनते हैं। समन्वय के प्रमुख उद्देश्य। रोजगार योग्य मानव संसाधन तैयार करना, बेरोजगारी एवं कौशल अंतर स्किल गैप को कम करना, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देना। नंबर 1, स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई नोडल मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE। इसके उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देना। वर्ष 2022 तक करोड़ों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना। भारत को विश्व का स्किल कैपिटल बनाना। इसके प्रमुख उद्देश्य। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF के अनुसार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना। रोजगार एवं प्लेसमेंट सहायता। महिलाओं एवं ग्रामीण युवाओं को विशेष प्राथमिकता। इसके लाभ। रोजगार की संभावना बढ़ती है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, उद्योगों को कुछ

युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र देना, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, पूर्व कौशल को प्रमाणित करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं: निःशुल्क प्रशिक्षण, उद्योगों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र, अल्पकालीन प्रशिक्षण प्लेसमेंट सहायता, सॉफ्ट स्किल एवं डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्र: सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन, कृषि, निर्माण कार्य, सौंदर्य एवं वेलनेस, फैशन डिजाइनिंग, खुदरा व्यापार। इसके लाभ: रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, स्वरोजगार हेतु सहायता, उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण। नंबर 3, जन शिक्षण संस्थान JSS पूर्णाम श्रमिक विद्यापीठ संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। इसके उद्देश्य: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अशिक्षित नव साक्षर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रमुख प्रशिक्षण: सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, बांस शिल्प। इसकी विशेषताएं: स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण, निःशुल्क या अत्यंत कम शुल्क, महिलाओं को प्राथमिकता, स्वरोजगार हेतु प्रेरणा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उद्योगों का विकास। नंबर 4, कौशल भारत डिजिटल, स्किल इंडिया डिजिटल। स्किल इंडिया डिजिटल या कौशल भारत डिजिटल भारत सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके उद्देश्य: डिजिटल माध्यम से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, रोजगार एवं प्रशिक्षण की जानकारी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रमुख सुविधाएं: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई लर्निंग, डिजिटल प्रमाण पत्र, रोजगार पोर्टल, कौशल पाठ्यक्रम, ऑनलाइन मूल्यांकन। इसके लाभ: कहीं से भी प्रशिक्षण, समय एवं धन की बचत, डिजिटल कौशल का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना 2009 में की गई। उद्देश्य: निजी एवं सरकारी संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों के सहयोग से प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF। NSQF एक राष्ट्रीय मानक है जो प्रशिक्षण एवं शिक्षा को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ता है। इसकी विशेषताएं: स्तर आधारित प्रशिक्षण, योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र, योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र, शिक्षा एवं कौशल का एकीकरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। कौशल विकास के लाभ: विद्यार्थियों के लिए रोजगार योग्य बनते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरोजगार की संभावना बढ़ती है। उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, उत्पादन। और इसके उद्देश्य: युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र देना, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, पूर्व कौशल को प्रमाणित करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं: निःशुल्क प्रशिक्षण, उद्योगों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र, अल्पकालीन प्रशिक्षण प्लेसमेंट सहायता, सॉफ्ट स्किल एवं डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्र: सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन, कृषि, निर्माण कार्य, सौंदर्य एवं वेलनेस, फैशन डिजाइनिंग, खुदरा व्यापार। इसके लाभ: रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, स्वरोजगार हेतु सहायता, उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण। नंबर 3, जन शिक्षण संस्थान JSS पूर्णाम श्रमिक विद्यापीठ संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। इसके उद्देश्य: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अशिक्षित नव साक्षर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रमुख प्रशिक्षण: सिलाई एवं कढ़ाई,

0: ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिंग, खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, बांस शिल्प, इसकी विशेषताएं, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण, निःशुल्क या अत्यंत कम शुल्क, महिलाओं को प्राथमिकता, स्वरोजगार हेतु प्रेरणा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उद्योगों का विकास। नंबर 4, कौशल भारत डिजिटल, स्किल इंडिया डिजिटल। स्किल इंडिया डिजिटल या कौशल भारत डिजिटल भारत सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके उद्देश्य, डिजिटल माध्यम से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, रोजगार एवं प्रशिक्षण की जानकारी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रमुख सुविधाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई लर्निंग, डिजिटल प्रमाण पत्र, रोजगार पोर्टल, कौशल पाठ्यक्रम, ऑनलाइन मूल्यांकन। इसके लाभ, कहीं से भी प्रशिक्षण, समय एवं धन की बचत, डिजिटल कौशल का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की स्थापना 2009 में की गई। उद्देश्य, निजी एवं सरकारी संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों के सहयोग से प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एनएसक्यूएफ एक राष्ट्रीय मानक है, जो प्रशिक्षण एवं शिक्षा को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ता है। इसकी विशेषताएं, स्तर आधारित प्रशिक्षण, योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र, योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र, शिक्षा एवं कौशल का एकीकरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। कौशल विकास के लाभ, विद्यार्थियों के लिए रोजगार योग्य बनते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरोजगार की संभावना बढ़ती है। उद्योगों के लिए, प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं, उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि, प्रशिक्षण लागत कम होती है, देश के लिए बेरोजगारी कम होती है, आर्थिक विकास में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत होती है। चुनौतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों की कमी, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, उद्योगों से सीमित समन्वय, प्रशिक्षण के बाद रोजगार की कमी, डिजिटल संसाधनों का अभाव, जागरूकता की कमी। सुधार के सुझाव, प्रत्येक जिले में आधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएं, उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाई जाए, विद्यालय स्तर से कौशल शिक्षा प्रारंभ की जाए, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाए, डिजिटल प्रशिक्षण का विस्तार किया जाए, रोजगार एवं प्लेसमेंट सेवाओं को मजबूत बनाया जाए, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं। निष्कर्ष, भारत के विकास में शिक्षा एवं रोजगार के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, कौशल भारत डिजिटल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF जैसे कार्यक्रम युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो, तो भारत न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकेगा, बल्कि विश्व में कुशल मानव संसाधन का अग्रणी केंद्र भी बन सकेगा। कौशल विकास ही विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रविंद्र पांडे से उनकी वार्ता। विषय था, शिक्षा और रोजगार के बीच समन्वय हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम उजाले की ओर अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को, फिल्म थी ज़माने को दिखाना है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। और अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये अगला गीत। मजरूह के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और फिल्म का नाम है कातिलों का कातिल।

अब लीजिए पेश है खुदा कसम फिल्म का गीत। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले, गीतकार हैं मजरूह, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

जुगल किशोर तिलकराज के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे एम जी हाशमत की रचना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी पलकें।

नसीब फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है वारदात। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की। रमेश पंत ने लिखा है इस गीत को और इसकी तर्ज बनाई है बप्पी लाहिरी ने।

अभी आप सुन रहे थे शाका फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। बर्मा मल्लिक के बोल थे और राजेश रोशन का संगीत था। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत, फिल्म ताकत से। गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद रफ़ी। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल के गाए इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। प्रतीक्षा कीजिए।

0: वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।

0: ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
3: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार

0: लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में दो दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
1: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
2: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
3: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
7: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
6: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings.
7: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
6: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
8: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है।

0: defeated Japan's Riko Gunji 21-15, 21-15 in the second round. The six-seeded Indian will now face top seed and former world champion Ratnachok Itanon from Thailand. However, the campaign came to an end for all Indian men singles players. And now before we end the bulletin, the headlines once again. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees. No changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within the next month to ensure AI safety and tackle deepfakes. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अफसरान के जरिए गिरफ्तारी के अख्तियारात खत्म कर दिए हैं और कानूनी कार्रवाई किए जाने की हद में 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जीएसटी की शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के सबब फोन और नेटवर्क की मजबूत सिक्योरिटी निहायत जरूरी हो गई है। उन्होंने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निमटने के लिए एक आलमी फ्रेमवर्क की तश्कील देने की भी अपील की। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब अश्वनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाब्तों से मुतालिक एक मशावरती दस्तावेज अगले माह जारी करेगी ताकि एआई की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके और डीप फेक से मुतालिक मसाइल का मुकाबला किया जा सके। 42 साबिक जजों ने एक खुला खत तहरीर किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन, अदलिया और दीगर आईनी इदारों को कमजोर करने की कोशिशों पर तश्वीश का इजहार किया गया है। कनाडा की शायरा एन कैरसन को अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। ये इनाम उन्हें क्लासिकी रिवायत को मौजूदा दौर के तख्लीकी अंदाज के साथ हम आहंग करने वाली उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में दिया गया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु फिनलैंड के शहर वांटा में जारी आर्कटिक ओपन के खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अफसरान की गिरफ्तारी के अख्तियार को खत्म कर दिया है और मुकदमा चलाने की हद को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। यह फैसला आज नई दिल्ली में काउंसिल की 57वीं मीटिंग में किया गया। टैक्स से मुतालिक मामले में जुर्माना, कैद या दोनों की सजा का फैसला अदालत की सौबिदीद पर छोड़ दिया गया है। ऐसा टैक्स दहिंदा जो देर से रिटर्न दाखिल करता है, कोई गलती करता है या टैक्स की अदायगी में ताखीर करता है, उसे रकम की वसूली, सूद और मुतनासिब जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद आज शाम सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है और मौजूदा शरहों का ढांचा तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने आज नोटिस जारी करने और कार्रवाई के लिए यकसा मेयारात की सिफारिश की है। इसके अलावा 10,000 रुपए या इससे कम रकम से मुतालिक कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और इस हद से कम मालियत के जेर इल्तवा नोटिस भी वापस लिए जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि 10,000 रुपए या इससे कम मालियत के मामलों में नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेली मवासलात और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत के तनाजुर में सिक्योरिटी के निजाम को मजबूत बनाना निहायत जरूरी है। जनाब मोदी ने यह बात आज नई दिल्ली के यशु भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें एडिशन का इफ्तिताह करते हुए कही।
2: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए चैलेंजेस को भी उजागर किया और इस खतरे से निमटने के खातिर आलमी सतह पर एक मुश्तरका फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया।
2: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है ये भी हम देख रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत का टेली मवासलात का शोबा रफ्ता रफ्ता खुद किफालत की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने मुल्क में टेली मवासलात के शोबे और डिजिटल राब्ते की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम मुल्क की डिजिटल तब्दीली के अमल का बुनियादी हिस्सा रही है। इस मुहिम में मोबाइल फोन को मरकजी हैसियत दी गई है ताकि डिजिटल फर्क को खत्म किया जा सके और टेक्नोलॉजी को हर शख्स के लिए ज्यादा काबिल रसाई बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी अब मुल्क के हर जिले तक पहुंच चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ डिजिटल और ऑनलाइन तालीमी प्लेटफॉर्म्स के जरिए तकरीबन 25 करोड़ तलबा को जोड़ने के लिए काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत का आइंदा एक माह के अंदर मस्नूई जहानत एआई के मुस्तकबिल के जाब्तों से मुतालिक एक मशावरती दस्तावेज जारी करने का मंसूबा है। इसमें एआई की हिफाजत को यकीनी बनाने और डीप फेक के बढ़ते हुए खतरे से निमटने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने आलमी तरक्याती रिपोर्ट 2026 जिसका उनवान मस्नूई जहानत का वादा है जारी करने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुजव्वजा मशावरती दस्तावेज में एआई की हिफाजत, साइबर सिक्योरिटी, मस्नूई जहानत के फवायद और इसके मुमकिन नुकसान पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत के फवायद माशरे के तमाम तबकात तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसी नुकसानदेह एप्लीकेशन से महफूज रखने को यकीनी बनाने की जरूरत पर गौर किया जाएगा। मस्कूरा रिपोर्ट के मुताबिक जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी बैंक के तावुन से एक वसी मुताला किया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि माशरे के वो तबकात जो रिवायती तौर पर टेक्नोलॉजी की सहूलतों से महरूम रहे हैं वो भी मस्नूई जहानत एआई से फायदा उठा सकें।
3: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि किस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे इकदाम के जरिए इस विजन को हकीकी शक्ल दी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
4: पार्लियामेंट ने 2023 में आईन में 106 तरमीम करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को मंजूरी दी जो वफाकी निजाम की सभी सतह पर खवातीन की मसावी नुमाइंदगी को फरोग देने में एक तारीख साज कदम है। इस अहम कानून के तहत लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए एक तिहाई सीटें रिजर्व हैं। इस साल यौम आज़ादी के अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में खवातीन की एक तिहाई नुमाइंदगी के कानून में कई दहाइयों से जारी ताखीर को खत्म करें और इसके जल्द अज जल्द निफाज को यकीनी बनाएं।
2: आज पंचायतों में, नगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन करें और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से आग्रह करता हूं, आइए महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
4: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार से राज्य

0: राज्यसभा एमपी धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने मुल्क की निस्फ आबादी के लिए सियासत और पॉलिसी साजी के अमल में फैसलाकुन रोल अदा करने का रास्ता हमवार किया है।
1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
0: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नफाज के साथ ही लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन की नुमाइंदगी में तेजी से इजाफा होगा। भारत की नारी शक्ति को बाइख्तियार बनाने की समत में ये एक फैसला कुन कदम है, जिसके जरिए फैसला साजी और मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर में खवातीन को एक मजबूत आवाज फराहम होगी। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजानी शिंज़ो आबे की अहलिया आकी आबे से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो भारत के साथ आकी आबे के मुसलसल और देरीना ताल्लुक को निहायत कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि शिंज़ो आबे उनके अजीज दोस्त और एक दूरंदेश रहनुमा थे, जिन्होंने भारत और जापान के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम और फैसलाकुन रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 42 साबिक जजों ने मुल्क के अवाम के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें चुनाव कमीशन, अदलिया और दीगर आईनी इदारों को कमजोर करने की कोशिशों पर तश्वीश का इजहार किया गया है। खत में कहा गया है कि भारत के आईनी इदारे मुसलसल हमलों की जद में हैं। साबिक जजों ने कहा कि इस मामले में इंतखाबी कमीशन तवज्जो का मरकज बना हुआ है और आला अदलिया और दीगर कानूनी इदारे भी इससे महफूज नहीं रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह एक ऐसी मुहिम है जिसे मफाद परस्त सियासी अनासिर चला रहे हैं और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने के मुमकिन संगीन नतीजे की कोई परवाह नहीं है। खत में इस बात को उजागर किया गया है कि वोटर फहरिस्तों की खसूसी जाम नजरसानी SIR अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 की दफा 21(3) के तहत कानूनी तौर पर दुरुस्त है। साबिक जजों ने इस बात को उजागर किया कि आखिरी मरतबा SIR का अमल तकरीबन 2 दहाई कबल मुकम्मल हुआ था और उस वक्त किसी ने भी वोटर फहरिस्त पर नजरसानी के अमल को साजिश करार नहीं दिया था। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले बरस 863 अरब डॉलर मालियत की बरामदात रिकॉर्ड की और इस साल वो 1 ट्रिलियन डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करने का इरादा रखता है। वजीर मौसूफ ने यह बात आज नई दिल्ली में मुनाकिदा 31वें CII साझेदारी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इत्तिलात और नशरियात के वजीर मुमलिका डॉक्टर एल मुरुगन ने आज भारतीय नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी महारतों, तख्लीकी इस्तेदाद और इख्तराई सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए 2047 तक विकसित भारत के विजन को हकीकत बनाने में अपना रोल अदा करें। जनाब मुरुगन ने यह बात आज नोएडा के एक इदारे में तलबा और सीखने वालों से खिताब करते हुए कही। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज कहा कि कोचीन शिपयार्ड को अमेरिका, जर्मनी और नॉर्वे समेत कई ममालिक से 40 से ज्यादा बहरी जहाज तैयार करने के ऑर्डर मौसूल हुए हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत मुल्क में बहरी जहाज साजी के लिए एक साजगार इको निजाम तश्कील दे रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि इस तरह के ऑर्डर से भारत के लिए आलमी सतह पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। कनाडा की शायरा और मजमून निगार एन कैरसन को 2026 का अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। स्टॉकहोम में स्वीडिश एकेडमी ने इनाम का ऐलान करते हुए कहा कि एन कैरसन को उनकी जुर्रात मंदाना और इख्तिराई अदबी तख्लीकात के लिए एजाज से नवाजा गया है। उनकी तहरीरें क्लासिकी अदबी रिवायत के साथ मुनफरिद और तख्लीकी अंदाज में मुकालमा करते हुए असर हाजिर के अदब के लिए नई अदबी असनाफ और असालीब तश्कील देती हैं। और बैडमिंटन में 2 मरतबा की ओलंपिक फातह पीवी सिंधु आज फिनलैंड के वांटा में आर्कटिक ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को दूसरे राउंड में 21-15 से शिकस्त दी। छठे सीड के भारतीय खिलाड़ी का अगला मुकाबला थाईलैंड के पहले सीड और साबिक आलमी चैंपियन रशनॉक इटानो से होगा। इसके बाद दिन में कृष्णा प्रसाद और पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय के मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोनस से होगा। سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا آج صبح گوا میں ان کی رہائش گاہ پر دل کا شدید دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا. وہ 75 برس کے تھے. نانا پاٹیکر ہندی اور مراٹھی سنیما میں اپنی شاندار اداکاری کیے جانے کے لیے جانے جاتے تھے. انہوں نے کئی دہائیوں تک سنیما میں کام کیا. نانا پاٹیکر کو پرندہ، پرہار، دی فائنل ایکٹ، ترنگا کرانتی، ویر، خاموشی، اب تک 56 اور ویلکم جیسی فلموں کے لیے کافی مقبولیت حاصل ہوئی. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس افسران کے ذریعے گرفتاری کے اختیارات ختم کر دیے ہیں اور قانونی کارروائی کیے جانے کی حد 1 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دی ہے. جی ایس ٹی کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے سبب فون اور نیٹ ورک کی مضبوط سیکیورٹی نہایت ضروری ہو گئی ہے. انہوں نے ڈیپ فیک اور سائبر دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے ایک عالمی فریم ورک کی تشکیل دینے کی بھی اپیل کی. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ضابطوں سے متعلق ایک مشاورتی دستاویز اگلے ماہ جاری کرے گی تاکہ اے آئی کی سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور ڈیپ فیک سے متعلق مسائل کا مقابلہ کیا جا سکے. 42 سابق ججوں نے ایک کھلا خط تحریر کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن، عدلیہ اور دیگر آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور کینیڈا کی شاعرہ این کیرسن کو ادب کا نوبیل انعام دیا گیا ہے. یہ انعام انہیں کلاسی کی روایت کو موجودہ دور کے تخلیقی انداز کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: کچھ لکھا اور فالو کیجئے ویوت بھارتی کے آفیشیل پیج کو.
4: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن. کچھ ہی کھڑوں میں ہوگا کارکرم آج کے فنکار.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं।

जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

0: हिसाब दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत SH बिहारी के थे और संगीतकार थे OP नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं। और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे। संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन

0: में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहाग रात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।
1: मोहे लगे रे।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राजश्री की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: आज हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

माया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

हेमंत कुमार को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी बात एक रात की। आइए सुने रजनीगंधा कार्यक्रम का अगला गीत।

और इस पल आपका गम, ये तन्हाई

0: यह गाना था फिल्म राज से और गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनें अगला गीत।
1: कुछ

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे इंदिवर की रचना। फिल्म का नाम था सफर और गायक कलाकार थे किशोर कुमार। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी नगमा।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंची को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष

0: That threw a playful dialogue with a classical tradition. And that's the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।

11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।